भाग साच रखे अहे निस बैराग क्यों जुग में अमृत साची बाणी पूरे पाग हर नाम सुमाणी सिद्ध साधक तरसे सब लोए पूरे पाग प्राप्त होए सबके साचा साचा है सोए उत्तम ब्रह्म पछाणे कोए सच साचा सच आप दृढ़ाए नानक आपे वेखे आपे सच लाए तनासरी महला तीजा नावे की कीमत मित कही न जाए से जन तन जिन एक नाम लिवलाए गुरमत साची साचा विचार आपे बगसे दे विचार हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ हम मूर्ख मूर्ख मन माहे होमे विच सवकार कमाहे गुर प्रसादी होमे जाए आपे बगसे लए मिलाए बिखिया का धन बहुत अभमान अहंकार डूबे ना पावे मान आप छोड़ सदा सुख होई गुरमत साला ही सच सोई आपे साजे करता सोए तिस बिन दूजा अवर न कोए जिस

अदृष्टा गोचर अपरंपर स्वामी पुर पूरे प्रगट कर दीने। राम पास चंदन हम काष्ट लोष्ट हर संग हरी सत संग पए हर कंचन चंदन कीने रहाओ। नाव शेख खट बोले मुख आगर।

छूटे बिरस जाए परमाई अंध रूप रवे उसा मध्य जल कद पेखो जाई तुम दयाल किरपाल किरपा निध पतत पामन गोसाई पोर सूख आनंद राज पाए मुक्ते निमुख बुलाई जाप ताप भगत सा पूरी जो प्रभ के मन पाई नाम जपत तृष्णा सा बुझी है नानक त्रिप्त अघाई तना श्री महला पंजवा जिन कीने वसे अपने त्रै गुण पावन चतुर संसारा जग स्नान ताप थान खंडे क्या यो जंत विचारा प्रभ की ओढ़ गई तो छूटो साध प्रसाद हर हर हर गाए बिखे ब्याज तब हुटो हरहाओ न सुनिए न मुक्ते बकिए न मोहे ओ डीठी ऐसी ठगौरी पाए पुलावे मन सबके लागे मीठी माए बाप पूत हित प्राता उन कर कर मेल्यो दुआ किसी वाद काट किसी पै सगले लर लर मुआ ओं बलिहारी सतगुरे अपने जिन यो चलत दिखाया गूजी पाए जले संसारा भगत ना व्यापे माया संत प्रसाद महा सुख पाया सगले बंधन काट।

खंडो अनकबीरी समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुमगी सजन सुहेले रखो रखनहार दयाला नानक करके गोले तनासरी महला पंजवा पूजा वर्त तिलक इस नाना

दुतिया पाओ निवार, बंधन काट लियो अपने कार, कभू न आवे हार। तेरी शरण पया हो जीवा, तू समरथ पुरख मेहरवान। आठ पहर प्रभु को आराधी, नानक

फिरत पेटे जन साधु पूरे गुर समझाया आन सगल बिद काम न आवे हर हर नाम ते आया ताते मोए धारी ओड़ गोपाल सरन परयो पूर्ण परमेसर बिनसे सगल जंजाल रहाव सुर्ग मृत पयाल भू मंडल सगल ब्यापे माए जी उदाहरण सब कुल तारन हर हर नाम ते आए नारक नाम निरंजन गाइए पाइए सर्ब निधाना।

चरण गए प्रव्यापने सुख पायो दिन रात तनासरी महला पंजवा पर हरना लोभ चूड़ निंद ए भी करत गुदारी मृत्यु आस मिथ्या मीठी ए टेक मने साधारी सागत की आवरदा जाए बिरतारी जैसे कागद के पार मूसा टूक गवाव काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी बूर्द अंत नान प्रकाड साध जना संगारी तनासरी महला पंजवा सेमर सेमर स्वामी प्रव्यपना शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म मोरे जाती रसना राम रसायन माती रंग रंगी

राम नाम रंग जागा, आस शीज गया सब तन ते, प्रीतम स्यों मन लागा, राव जय जय पेखो तय नारायण, सगल कटा मैं तागा, नाम उदक पीवत जन नानक,

राम रहाव सिमर सिमर स्वामी प्रव्यपन निट न आवे जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पाए उहर का ताम चरण कमल हर जन की थाती कोड़ सुख विश्राम गोबिंद दमोदर सिमरो दिन रैन नानक सत कुरबान तनासरी महला पंजवा मांगो राम ते एक दान सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम रहाओ चरण तुम्हारे हृदय वस संतन का संग पावो सो अगर मैं मानना व्यापे आड़ पैर गुण गाओ स्वस्थ बसता हर की सेवा मध्यान्त प्रव जापन नानक रंग लगा परमेश्वर।

देखो तै तै स्वामी कोई न पहुंचन हार, जो जो करे अवग्या जन की होए गया तत शार। करन हार खवाला होवा जाका अंत न पारावार, नानक दास रखे प्रभ अपने निंदक काढ़े मार।

पतत उदाहरणा जी जंत तारणा वेद उच्चारण अंत पायो गुणे सुख सागरा ब्रह्मृत नागरा भगत वच्छल नानक गायो तनासरी महला पंजवा हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो।

काथे अगोचरा पतत उदाहरण नाम तेरा अंतरजामी नानक के स्वामी तरबत पूर्ण ठाकुर मेरा तनासरी महला पंजवा घर बारवा एक ओंकार सतगुर।

घर सेवा। चरण कमल जाका मन रापै, तोग अगन तिस जन ना व्यापै। सागर तरिया साधु संगे, निरभउ नाम जपो हर रंगे। पर तन दोख के पाप ना फेड़े, जम जंदार न आवे नेड़े। तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई, नानक उधरे प्रभ शरणाई। तन्हा श्री महला पंजवा, तृप्त भई सज भोजन खाया, मन तरसना नाम ते आया। जीवना हर जीवना, जीवन हर जप साध संग रखाओ। अनक प्रकारी बस्तर उड़ाए, अनदन कीर्तन हर गुण गाए। हस्ती रथ आस असवारी, हर का

साधो यो जग परम भोलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया माया हाथ बिकाना रहाओ। मात पिता भाई सुध बनता।

त्यावक बपड़ा छपड़ी नाए कीचड़ डूबे मैल न जाए रहाओ। रख रख चरण तरे विचारी दुबदा छोड़ पए निरंकारी मुगत पदार्थ हरस चाखे आमन जान रहे पुर राखे सर्वर हंसा छोड़ न जाए प्रेम भगत कर सहज समाए सर्वर मैं हंस हंस मैं सागर अकत कथा गुर बचनी आदर सुन मंडल एक जोगी बैसे नार ना पुरख कहो को कैसे तिर पवन जो तरहे लिवलाई तुर नरनाथ सचे सरनाई आनंद मूल अनाथ आधारी गुरमुख भगत सहज बिचारी भगत वशल पे काटन हारे होमे मार मिले भगत हारे अनक जन कर काल संताए मन न लखाए मंडल में आए जन्म पदार्थ दुबधा खोवे आप न चीनस प्रम प्रम रोवे है तो पढ़तो सुन तो एक तीर्ज धर्म तरणी तर टेक जत स संजम हृदय समाए चौथे पद को जे मन पति आए साचे निर्मल मैल ना लागे गुर कै शब्द परम पौ पग तूरत मूरत आद अनूप नानक जाचे साज स्वरूप तनासरी महला पहला सहज मिले मिले या परवान ना तस मरण ना आ

ओंकार सतगुर प्रसाद। तीर्थ नावन जाओ तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ, दस पुरब सदा दसारा। ओ नाम हर का सदा जाचो, दियो प्रतरणी तरा। संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिना। गुरवाक निर्मल सदा चानन, नित साच।

एक नाम निरंजनो जियो, तू दाता दातार सर्व दुख पंजनो जियो, दुख हरत करता सुखे स्वामी शरण साधु आया, संसार सागर महा बिखड़ा पल एक महे तराया, पूरे या सर्वथाई गुर ज्ञान नेत्री अंजनो, बिनवंत नांग सदा सिमरी सर्व दुख पय पंजनो, आप लिगे लड़ लाए कृपा तारिया जियो, मोय निर्गुण नीज अनाथ प्रभ अगम अपारिया जियो, दयाल सदा कृपाल स्वामी नीचता पणहारिया, जी जनसा वस तेरे सगल तेरी सारिया, आप करता आप भुगता आप सगल बीचारिया, बिनवंत नान गुण गाए जीवा हर जप जपो बनवारिया, तेरा दर्श अपार नाम अमोल जियो, नित जपे तेरे दास पुरख अतोल जियो, संत रसन रूठा आप तूठा हर से सही मातया, गुर चरण लागे महापाग सदा अन दिन जागया, सदा सदा सिमर तब्द स्वामी सास सास गुण बोलई, बिनवंत नानक तूर साधु ना प्रभु अमोलई, राग तनासरी बाणी भगत कबीर जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरू मर मना जाना, संत संगत आराम हृदय बसाई रहाओ, हनुमान सरगरड़ समाना सुरपत नरपत नहीं गुण जाना, प्यार वेद आर सिमरत पुराना कमला पत कवला नहीं जाना, कह कबीर सो परमे नाही पगलग राम रहे सर नाही, तिनते पैर पैर ते करियां आप कटे तन छीजे, काल अहेरी फिरे बदक ज्यों कहो कमन बिद कीजे, सोधन आमन लागा माल पिता भाई सुध बनता, कहो कौ है का रहाओ, जब लग जोत काया मैं बरत है आपा पशु न बूझे, लाल चकरे जीवन पद कारण लोचन कशु न सूझे, कहत कबीर सुनो रे प्राणी छोड़ो मन के परमा, केवल नाम जपो रे प्राणी परो एक की सरना, जो जन पाओ पगत कह जाने ताको अचरज काहो, ज्यों जा जल में पैसन निकसे,

जीव खुदाई ऊपर मंडप छाए मारकंडे ते को अदकाई जिन त्रेण थर मूंड बलाए हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्व करत हो बिरस जाए झूठी देही हरहाओ मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से पाई पार है जोजन छद्र चले था देही गिरज ना खाई सर्व सोयन की लंका होती रावण से अदकाई कहां पयो दर बंदे हाथी खिर में पई पराई दुर्वासा से करत ठगोरी यादव ए फल पाए कृपा करी जने अपने ऊपर नाम जो हर गुण गाए तस बैरागन मोय बस कीनी पंचो का मिट नावो सत्र दोए परे अमृत सार बिख को मार कढावो पाचे भौर न आवन पावो अमृत बाणी कड़ते उचरो आत्म को समझावो रहाओ बजर कुठार मोए है शीना कर मिनत लग पावो संतन के हम उल्टे सेवक भगतन ते डर पाओ ये संसार ते तब ही छूटो जो माया नह लपटावो माया नाम गर्भ जोन का ते ता दर्शन पाओ इत कर पड़त करे जो जान तेन पौ सगल चुकाई है तहत नाम जो बार क्या परम हो ए संजम घर पाइये मार वाड़ जैसे नीर बालहा बेल बालहा करहला जो कुरंक निसनाद बालहा जो मेरे मन रामैया तेरा नाम रूढ़ो रूप रूढ़ो अतरंग रूढ़ो मेरो रामैया रहाओ जो तरणी को इंद्र बालहा कुसुम बाज जैसे पवरला जो कोकल को अंब बालहा त्यो मेरे मन रामैया चक्री को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसला जो तरणी को कंत बालहा त्यो मेरे मन रामैया पार्ग को जैसे खीर बालहा चात्रक मुझ जैसे जल थरा मछली को जैसे नीर बालहा त्यो मेरे मन रामैया साधक सिद्ध सगर मुन चाह है बिरले काहू डीठला सगल पवन तेरु नाम बालहा त्यो नाम में मन बीठला पहल पुरगे पुंडरक वना ताचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानऊ हर हर नचंती नचना पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसा दमरा असगा अस उसगा।

जंगम जाती तायो तूप दीप नहीं बेदा तायो पूजो पाती ताया बो खंड खोजते नविंद पाई ना कश आए बो ना

हमरा खुशी करे नित जियो, पनिया छत नीका अनाज मंगो सत सीका, गऊ पैस मंगो लावेरी एक ताजन तुरी चंगेरी, करकी गीहन चंगी चन तन्ना ले वै मंगी जैत।

मेरे हीरे रतन नाम घर बसया बुरहा तरयो मेरे माथा जन्म जन्म के किलबख दुख उतरे गुरु नाम दियो रिन लाथा मेरे मन भाज राम नाम सब अर्था गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया बिरनावे जीवन बिरथा अरहाओ बिन गुर मूड पए है मनमुख ते मोह माया नित फाथा तिन साधु चरण न सेवे तबहू तिन सब जन्म अकाथा जिन साधु चरण

आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुन कर कथा नाम ले लाहा। हर हर कृपा तार गुर मिल हो, गुर मिले हर ओ महाराम। तार कीर्त जस अगम अथाह, खिन खिन राम नाम गावाह। मोको तार कृपा मिली गे गुरदाते, हर नानक भगत ओ महाराम। जैत सरी महला चौथा, रस रस राम रसाल सलाहा। मन राम ना पीना ले लाहा, किन किन भगत करे दिन राती। गुरमत भगत ओ महाराम, हर हर गुण गोविंद जपाहा। मन तन जीत शब्द ले लाहा, गुरमत पंच दूत बस आवे। मन तन हर ओ महाराम, नाम रतन हर नाम जपाहा। हर गुण गाय सदा ले लाहा, दीन दयाल कृपा कर माधो। हर हर नाम ओ महाराम, जप जगदीत जपो मन माहा। हर हर जगन्नाथ जग लाहा, तन तन वड्डे ठाकुर प्रा मेरे। जप नानक भगत ओ महाराम।

दूख आराधन दूख आराधन बिसरे ना काहू बेरा नाम जगत कोड सूर उजारा बिरसे परम अंधेरा थान थनंतर सब नहीं जाई जो दिसे सो तेरा संत संग पावे जो नानक जिस बौर न होई है फेरा जय तसरी महला पंजवां कार चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद आव मैं सुख पायो गुर आग तजी स्यान बचिंत सारी अंग छोड़ो है त्याग रहाओ जो देखो तो सगल मोय मोहियो तो शरण परयो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तो जब छोड़ी मोहरी लाग तेरे ओ सागर पापक को जो संत फेटे वड़ भाग जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरणी चित लाग जय तसरी महला पंजवां मन में सतगुर ध्यान करा त्रिड़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभु जीव माया करा रहाओ काल जल अरमा जंजाला छुड़के जमे डरा आयो दुख हरण शरण करना पत कयो चरण आसरा नाव रूप पयो सल संग पंध पार परा आप्यो पियो गातियो परमा कहो नानक अजर जरा जय तसरी महला पंजवां जा को पहे गोविंद सहाई दुख सहज आनंद सगल स्यों वा को व्याध न काई रहाओ दिसे सब संग रह अलेपा न व्यापे उन्माई एक रंग तत के बेते सदगुर ते बुद्ध पाई दया मया कृपा ठाकुर की से ही संत सुपाई तिनके संग नानक निस्तरी है जिन रस रस हर गुण गाई जय तसरी

जाको जोगी खोज तहारे पायो नाए ते पारा। तो स्वामी तुम निट पछानो रूप रेख ते न्यारा, पाम नाम जगत में हर को कभू नाए संभारा। नानक सरण पर्यो जग बंधन राखो बिरद तुहारा, जय तसरी महला पंजवा। शांत कर पहला एक ओंकार सदगुर प्रसाद, श्लोक दर्शन प्यासी दिन सरात चितवो अन दिन नीत, खोल कपट गुर मिलिया नानक हर संगमीत। शांत सुन यार हमारे।

अवर न कहू तानी, ऐसो अमर मिलो भगतन कहो राज रहे रंग ज्ञानी, रोग सोग दुख जरा मर हर जने नहीं निकटानी, निरप हो रहे ले एक नानक हर मन मानी, टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी, ताको तोखा कहा व्यापे जाको ओढ़ तुहारी, अरहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अरजारी, नवखंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी, गुण निधान गुण तिन ही गाए जा को कृपा तारी, तो सुहिया तन उस जन्मा नानत बलिहारी, टोडी महला पंजवा घर दूजा चौपदे एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, तायो रे मान दह दिसतायो माया मगन स्वाद लो मोयो, तिन प्रभ आप पुरायो रहाओ, हर कथा हर जस साध संगत स्यों एक मोतन यो मन लायो, बिगसो पेख रंग सुंब को पार ग्रे जो होन जायो, चरण कमल स्यों पाओ न कीनो नय सद पुरख मनायो, ताकत को तावे बो पाती जो तेली बल्द परमायो, नाम दान स्नान न कियो एक निमख न कीर्त गायो, नाना झूठ लाए मन तोखयो न बूझो अपनायो, पर उपकार न कबहू किए नहीं सतगुर सेव थे आयो, पंच दूत राज संगत गोष्ट मतवारो मधमायो, करो बेनती साध संगत हर भगत बछल सुन आयो, नानक पाग परोहर पाछे राख लाज अपनायो, टोडी महला पनवा मानुख बिन बूझे बिरथा आया, अनक साहसी गार बो करता जो मृतक ओढ़ाया, रहाओ ताए ताए कृपन श्रम कीनो।

जप मन राम नाम निस्तारा, कोट कुटंतर के पाप सब खोवे। हर पवजिल पार उतारा रघाओ, काया नगर बस्त हर स्वामी। हर निर्भव निर्वैर निरंकारा, हर निगट बस्त कछन दर न आवे। हर लादा गुर विचारा, हर आपे सहो सराफ रतन हीरा। हर आप किया पासारा, नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे। तो सहो सचा बणजारा, बैराड़ी महला चौथा। जप मन हर निरंजन निरंकारा, सदा सदा हर त्याये सुखदाता। जाका अंत न पारा वारा, रहाओ अगन कुंट में उर्द लिवला।

मनहार अगम अगाध ऊच अपार जो तो सेवै तिन पौ दुख नाहे गुर प्रसाद नानक गुण गाहे जो दिसे सो तेरा रूप गुण निधान गोविंद अनूप सेमर सेमर सिमर जन सोए नानक कर्म प्राप्त होए जिन जपया तिस को बलिहार तिस के संग तरे संसार।

ऐसा जित सदा सुख होई रहाओ। जिन रंग कंत न रावया सा पछोरे ताणी, हाथ पछोड़े सिर तुणे जब रैण विहाणी।

अमीन, तेरा नाम है अदारा अरहाव करीमा रहीमा, अल्लाह तू गनी हाजरा हजूर दर पेश तू मनी, दरियाओ तू देहंद तू विशियार तू तनी, देह लेह एक तू दिगर को नहीं, तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी, नामे ते स्वामी बगसंद तू हरी, हल्ले यारा खुशखबरी, बाल बल जाओ हौ बल बल जाओ, नीकी तेरी बेगारी आले तेरा नाओ अरहाओ, कुजा आमत कुजा रवती कुजा मेरवी, द्वारका नगरी रास बगोई खूब तेरी पगरी।

रसना नाम जपोता मथिये इन विद अमृत पावो मन संपट जित सरनावन भावन पाती तृप्त करे पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन विद साहेब रब तरहे कहंदे कहे जावे तुम सर अवर न कोई भगत हीन नानक जन जंपे हाउ सालाही सच्चा सोई सूफी मोहल्ला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अंतर वसै ना बाहर जाए अमृत छोड़ कहे बिख खाए ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे हो वो चाकर साचे केरे रहाओ ज्ञान ध्यान सब कोई रवै बंधन बंधया सब जग पवै।

तीर्थ मल मल नहाए, तेरा सदड़ा सुनीजे पाई, जे को भय अलाए अरहाओ, जैसा भी जे सोलने जो खट्टे सो खाए, अगे पुछ न होवई, जे सण निसा

कामना आवई जिद तन नाही सच्चा नाव। सूही महला पहला कार सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जोग ना खिंता जोग ना डंड जोग ना पसम चढ़ाई है जोग ना मुंदी मूड मुड़ाए जोग ना सिंगी वाई है अंजन महे नरंजन रही है जोग जुगत एव पाई है गल्ली जोग ना होई एक दृष्ट कर समसर जाने योगी कही है सोई रहाओ जोग ना बाहर मड़ी मसाणी जोग ना ताड़ी लाई है जोग ना देद संतर पवे है जोग ना तीर्थ नाई है अंजन माए नरंजन रही है जोग जुग तिव पाई है सतगुर भेटे ता सहसा टूटे धावत वरज रहाई है निजर चरे सह तुन लाग करगी परचा पाई है अंजन माए नरंजन रही है जोग जुग तिव पाई है नानक जीव त्या अमर रही है ऐसा जोग कमाई है वाजे बाजो सिंगी वाजे तौ निरपहो पल पाई है अंजन माहे नरंजन रही है जोग जुगत तौ पाई है।

ढूंढ ढूंढाई, सत संगत मिल हारस पाई, तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक तुठा मिले हर पाई। सूफी महला चौथा, हर कृपा करे मन हर रंग लाए, गुरमुख हर का नाम सुमाए, हर रंग राता मन रंग माने, सदा आनंद रहे दिन राती, पूरे गुर के शब्द सुमाने रहाओ। हर रंग कौ लोचे सब कोई, गुरमुख रंग चलूला होई, मानमुख मुग्ध नर को रा होए, जे सो लोचे रंग न होवे कोय, नजर करे ता सतगुर पावे, नानक हर रस हर रंग समावे। सूफी महला चौथा, जेवा हर रस रही अघाए, गुरमुख पीवे सह सुमाए, हर राजन चा खोजे पाई, तौ कत अंध साध लो भाई, हरहाओ गुरमत रस राखो उरतार, हर रस राते रंग मुरार, मानमुख हर रस चाख्या ना जाए, होमे करे बहुती मिले सजाए, नदर करे ता हर रस पावे, नानक हर रस हर गुण गावे। सूफी महला चौथा, तार छेवा एक ओ अंकार, सतगुर प्रसाद नी जाहर जपतया, उत्तम पदवी पाए, पूछो बिदर दासी सुत, किसन उतरिया कार्य से जाए, हर की अकथ कथा सुनो जन पाई, जित सहसा दुख भूख सब ले जाए, अरहाओ अरवदास चुमार उस्तद करे, हर कीर्त निमख एक गाए, पतत जात उत्तम पया, चार वर्ण पय पगयाए, नाम दे प्रीत लगी हर सेती, लोभ शीपा कहे बुलाए, खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोडे, हर नाम देव लिया मुख लाए, जितने भगत हर सेवका, मुख अड़सर तीर्थ तिन तिलक कढ़ाए, जन नाग तिन को अन दिन परसे, जे कृपा करे हर राय। सूफी महला चौथा, तिनी अंतर हर आरा दया, जिनको तुर लिखिया लिखत ललारा, तिन की वकीली कोई क्या करे, जिनका अंग करे मेरा हर करतारा, हर घर त्याए मन मेरे, मन त्याए हर जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा, अरहाओ तोर भगत जिना कौ बख्शया, हर अमृत पद पंडारा, मूर्ख होवे सो उनकी रीस करे, तेस हलत पलत मोकारा, से भगत से सेवका, जिन्ना घर नाम प्यारा, इनकी सेवा ते घर पाई है, सिर निंदक कह पवे शारा, जिस कर विरती सोई जाने, जगत गुर नानक पूछ करो बिचारा, चौ पीढ़ी आद जुगाद बखीली कने ना पायो, हर सेवक पाए निस्तारा। सूफी महला चौथा, जिथे हर आरा दिए, तिथे हर मित सहाई, गुर कृपा ते हर मन वसे, होरत बिद लया न जाई, हर तन संचिए पाई, जे हलत पलत हर होए सखाई, हरहाओ सह संगति संघ हर तन खटिए, होर ते होर तो पाए, हर तन किते ना पाई, हर तने का वापारिया, हर तन तन विहाजे, कच्चे के वापारिये वा के, हर तन लया न जाई, हर तन रतन जवे हर माणक, हर तने नाल अमृत वे लैवत, हर भगती हर लिवलाई, हर तन अमृत वेले वत्ते का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही, हलत पलत हर तने की, भगता को मिली वड़े आई, हर तन निरपो सदा सदा।

पए हथों छुड़क गया अगे पलत सागत हर दर गए टोई ना पाई एस हर तन का साओ हर आप गए संतो जिसनु दे सो हर तन लद चलाई एस हर तने का तोटा कदे ना आवई जन नानक गोकुर सोझी पाई सूगी महला चौथा जिसनु हर सो प्रसन्न होए सो हर गुणा रवे तो भगत सो परवान जिसकी महिमा क्या वर्णी है जिसके हृदय वसया हर पुरख भगवान गोविंद गुण गाइये जियो लाए सदगुरु नाल ध्यान अरहाव सो सदगुरु सा सेवा सगुर की सबल है जिसते पागे परम निधान जो दूजे पाए सागत कामना अर्थ दुर्गंध सरेम दे सो नेफल सब अज्ञान जिसनु प्रतीत होए किसका गाव्या थाए पवे तू पावे दरगे मान जोवन प्रतीती कपटी कूड़ी कूड़ी अखी मीट दे उनका उतर जाएगा झूठ गुमान जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान।

तोर लिख पाया, पंच तत्कार तुद सृट सब साजी, कोई सेवा करहो जे किछ कीता होवे, एक ना सतगुर मेल तू बुझावे, एक मनमुख करे से रोवे, हर की वड्याई हो आख ना साका, हो मूर्ख मुगद नीचाण, जन नानक तौ हर बख्श लै मेरे स्वामी, शरणागत पया अजान, राग सूही महला पंजवा कार पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप तेर दिखलाई।

तुम छड़ाए लियो जन अपना, उर्ज परयो जाल जग सुपना रहाओ, पर्वत दोख महाबिकराला, खिन मैं दूर किए दयाला, सोग रोग बिपत अद पारी, दूर पई जपना मुरारी, दृढ़ तार लीनो लड़लाए, हर चरण गए नानक सरणाए, सूगी महला पंजवा, दीन छड़ाए दुनी जो लाए।

जाए, सर्व निरंतर एको जागे, जित जित लाया तित तित को लागे, अगम अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले बोल आया तेरा। सूही महला पंजवा, प्राते काल घर नाम उचारी, ईत यूत की ओर सवारी, सदा

प्रे भाग प्राप्त होई। अरहाओ श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई, महामोनी दूता लाई प्रेम शोहा करत कसाई। निर्दय जंत ते दया न पाई, अनक जन्म बीतियन फरमाई। तरवास न देवे दुत रमाई, दिन रैन अपना किया पाई। किस दोष न दीजे किरत पवाई, सुन साजन संत जन पाई। चरण सरण नानक गद पाई, अराग सूही

तेरा रूप अगम है, अरूप तेरा दरसारा। हौ कुरबाणी तेरिया सेवका, जिन हर नाम प्यारा। सभ्य इच्छा पूरिया जा पाया अगम अपारा। गुरु नानक मिलया पार ब्रह्म, तेरिया चरणा कौ बलिहार। राग सूही महला पंजवा, कार सतवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद तेरा भाणा तू है मनाए, जिसनु होए दयाला। साई भगत जो तुद पावे, तू सर्ब दियां प्रदपाला। मेरे राम राय संता टेक तुम्हारी, जो तुद पावे सो प्रवान। मन तन तू है आधारी।

लायन हरसो लयन मिलाए सच्चा अमर सच्ची पातशाही सच्चे से तीराते सच्चा सुख सच्ची वड़े आई जिसके से तिन जाते।

सेवक को पौ किशनाही जाम नहीं आवे नेरे रहाओ जो तेरे रंग रते स्वामी इनका जन्म मरण दुख नासा तेरी बख्शना मेटे कोई सदगुर का दिलासा नाम त्यायन सुख भर पायन आड़ पैर आराध है तेरी शरण तेरे परवास है पांच दुष्टले सद है ज्ञान त्यान कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जेन कल राखी मेरी सूखी महला पंजवा सगल त्याग गुर सरणी आया रखो रखनहारे जित तू लावे ते तम लागे क्या ए जंत विचारे मेरे राम जी तू प्रवेंतर जामी कर कृपा गुरुदेव दयाला गुण गावा नित स्वामी अरहाओ आठ पैर प्रभ अपना त्याई है गुर प्रसाद पोतरी है आप त्या होइए सब रेणा जीवतियां यो मरिए सफल जन्म जिसका जग पीतर साध संग नव जापे सगल मनोरथ तिसके पूर्ण जे दया करे प्रवे आपे दीन दयाल किरपाल प्रस्वामी तेरी शरण दयाला कर कृपा अपना नाम दीजे नानक साधर वाला राग सूही अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

दो दीवी अंध कोर कब मोहाइए गर्म से कर चोर के शुरू आईए गुरमुख चोर ना लाग हर नाम जकाइए शब्द निवारी आग जोत दी पाईए लाल रतन हर नाम गुरसुरत बजाइए सदा रहे नेकाम जे गुरमत पाईए आराध्य हर नाव मन वसाइए नानक मेल मिलाए जे तुद पाईए सूही महला पहला मनोना नाम सार आए न सत्याईए जो राखे कृपा तार तिवै सुख पाईए मैं अंदले हर नाम लगती टोणी रहो साहिब की टेक ना मोह है मोहनी रहाओ जय देखो तय नाल गुर देखा लिया अंतर भार पाल शब्द निहालिया सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना तुल पावे तिवे रिजाए परम पौ पंजना

मनना पिजई आत्मैले चित कठोर सपै दुध पी आईए अंदर विस निकोर आप करे किसे आखिए आपे बख्शनहार गुरसबदी मैल उतरै।

पाई परम गद पाई पंच मिले सोहाया गया क्रोध ममता तननाठी पाखंड परम गवाया हौ में पीर गई सुख पाया आरोगत पय शरीरा गुरप्रसादी ब्रह्म पछाता नानक गुणी गहीरा मनमुख विछड़ी दूर महल ना पाए बल गई बलराम जियो अंतर ममता कूर कूड़ विहाजे कूड़ लई बलराम जियो कूड़ कपट कमावे महा दुख पावे वेण सतगुर मगना पाया उजड़ पंथ प्रमे गावारी खिन खिन तक्के खाया आपे दया करे प्रवदाता सदगुर पुरख मिलाए जन्म जन्म के बिछड़े जन्म मेले नानक सहज सुपाए आया लगन गणाए हिरदे तन ओ

मन मजी वधाई। जब साजन सुने कर आए, गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए, वर पाया पुरख अगम अगोचर, सद नवतन बाल सिखाई, नानक कृपा करके मिले, विछड़ कदे ना जाई। सूगी महला चौथा, हर पहलड़ी लाव, प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जीओ, बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ हो, पाप तजाया बलराम जीओ, धर्म दृढ़ हो, हर नाम ते आओ, सिमरत नाम दृढ़ाया, सदगुर गुरपूरा आराध हो, तब किलबिख पाप गवाया, सहज आनंद हुआ वडभागी, मन हर हर मीठा लाया, जन कहे नानक लाभ पहली, आरंभ काज रचाया, हर दूजड़ी लाभ, सदगुर पुरख मला

नदर प्रभु सत्संग हर मंगल रस रसन रसाय नारक नाम प्रगासा अंतरतन विचारे गुरमुख नाम प्यारे हर नाम प्यारे शब्द निस्तारे अज्ञान अंधेर गवाया ज्ञान प्रचंड बलिया कर चानन कर मंदर सोहाया तन मन अर्प सिगार बनाए हर प्रसवते पाया जो प्रभ कह सोई पर कीजै नानक अंक समाया हर प्रभ काज रित्याया गुरमुख वियाहने आया गुरमुख अर पाया सातन कंत प्यारी संत जना मिल मंगल गाए हर जीव आप सवारी सुर नर गण गंधर्व मिल आए अपूर्व जंज बनाई नानक प्रपाया मैं सचा ना कदे मरे ना जाई राग सूगी शंत महला चौथा कार तीजा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद आवो संत जनो गुण गावे गोविंद के रे राम गुरमुख मिल रही है कर वाजे शब्द कन्हेरे राम शब्द कन्हेरे कर प्रतेरे तू करता सब ताई आयन जपी सदा सालाही साज शब्द लिवलाई अन दिन सहज रहे रंग राता राम नावृद पूजा नानक गुरमुख एक पछाणे अवर ना जाने दूजा सब में रव रहया हो प्रभ अंतर जमी राम गुर शब्द रवे रव रहया हो प्रमेरा स्वामी राम प्रमेरा स्वामी अंतर जामी कट कट रव्या सोई गुरमत सच पाईए सह समाईए तिस बिन अवर ना कोई सहजे गुण गावा जे प्रभावा आपे लय मिलाए नानक

काम क्रोध चितराई राम अंतर चितराई थाए न पाई बिरता जन्म गवाया जम मग दुख पावे चोटा खावे अंत गया पछताया बिन नावे को बेली नाही पुत कुटम सुध पाई नानक माया मोह पसारा आगे साथ ना जाई हां पूछो अपना सतगुरु दाता किन वेद दुत्तर तरिये राम सतगुर पाए चलो जीवत्या एव मरिये राम जीवत्या मरिये पौजल तरिये गुरमुख नाम सुमावे पूरा पुरख पाया वडभागी सच नाम लिव लावे मत प्रगाश पई मन मानिया राम नाम वड्याई नानक प्रपाया शब्द मिलाया।

की शरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा। सदा सदा प्रभ को बलिहार नानक सतगुरु बाणा। ऐसा गुरवड भागी पाई है जित मिले प्रभ जापे राम। जन्म जन्म के किलबिख उतर है हर संत धूड़ी नित नापे राम। हर धूड़ी नाइए प्रभु ते आई है

गुण गोपाल गाओ नित सखी हो, सगल मनोरथ पाए राम। साबल जन्म होआ मिल साधु, एक अंकार त्याए राम। जप एक प्रभु अनेक रव्या, सर्व मंडल छाया। ब्रह्मो पसारा ब्रह्म पसरिया, सा ब्रह्म दृष्टि आया। जल थल महियल पूर पूरन, तिस बिना नहीं जाए। देख दर्शन नानक बिसे, आप लए मिलाए। सूही महला पंजवा, आप चल नगर गोविंद गुरु का। नाम जपत सुख पाया राम। मन इच्छे से ही फल पाए, तरते आप वसाया राम। तरते आप वसाया सर्व सुख पाया, उत पाई सिख बेगासे। गुण गावे पूर्ण परमेसर, कार्ज आया रस। प्रभ आप स्वामी आपे रखा, आप पिता आप माया। कहो नानक सतगुर बलिहारी, जिन इउ थान सुहाया। कर मंदर हटनाले सोहे, जिस च नाम निवासी राम। संत भगत हर नाम अराध, कटिए जमकी फासी राम। काटी जम फासी प्रभ अवनासी, हर हर नाम तिहाए। सगल समग्री पूर्ण होई, मन इच्छे फल पाए। संत सज्जन सुख माणे रलिया, दुख दर्द प्रमनासी। शब्द सुहारे सदगुर पूरे, नानक सदबल जासी। दात खसम की पूरी होई, नित नित चढ़े सवाई राम। पार

दय दिस पूर है आजा स्वामी, कीमत कहन न जाई, कहो नानक सतगुर बलिहारी, जिन अचल नीव रखाई, ज्ञान त्यान पूर्ण परमेश्वर, हर हर कथा ने सुनिए राम, अणगल चोज भगत पा पंजन, अणगल वाजे तुनिए राम, अणगल चुनकारे तत् विचारे, संत गोष्ट नित होवे, हर नाम अरद है, मैल सब कट है, किलबग सगले खोवे, कै जन्म न मरना, आमन जाना, बौड़ ना पाइये जोनिए, नानक गुर परमेश्वर पाया, जिस प्रसाद इश पुनिए, सूही महला पंजवां, संतां के कार्ज आप खलोया, हर कम करामन आया राम, तरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम, अमृत जल छाया पूर्ण साध कराया, सगल मनोरथ पूरे, जय जयकार पया जग अंतर, लाते सगल वसूरे, पूर्ण पुरख अच्युत अविनाशी, जस वेद पुराणी गाया, अपना बिरद रखिया परमेश्वर, नानक नाम त्याया, नव निध सिद्ध रिद दीने करते, टोट न आवे काई राम, खात खर्चित बिलशित सुख पाया, करते की दात सुवाई राम, दात सुवाई निखुट न जाई, अंतर जामी पाया, कोट बिगल सगले उठ नाठे, दुख न नेड़े आया, सांत सहज आनंद कनेरे, बिरसी पूख सबाई, नानक गुण गावे स्वामी के,

सच रते से निर्मले होमे तज विकारा, जिस तू मिले सो तुद मिले सो ईस त्यारा। श्लोक महला तीजा, सूविगे सूहा सब संसार है, जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन में झूठ

पहला जिनी न पायो प्रेम रस संत न पायो साओ सुन्ये कर का पौना ज्यो आया त्यों जाओ मोहल्ला पहला सौ उलामे दिन के राती मिलन सहंस सिफत सराण छड के करंगी लगा हंस फेट अवेखा जीवया जित खाए वधाया पेट नानक सच्चे नाम वेण सबो दुश्मन हेत पौड़ी ढाडी गुण गावे नित जन्म सवारिया गुरमुख सेव सलाहे सच्चा उर तारिया कर दर पावे महल नाम प्यारिया गुरमुख पाया नाम हौं गुर को वारिया तू आप सवारे आप सिरजन सारिया सलोक महला पहला दीवा बले अंधेरा जाए बेद पाठ मत पापा खाए उगवे सूर न जापे चंद जय ज्ञान प्रकाश अज्ञान मिटंत वेद पाठ संसार की कार पढ़ पढ़ पंडित करे विचार बिन बूझे सब होए खुवार नानक गुरमुख उतर सपार महला पहला सब दे साधन आयो नाम न लगो प्यार रसना फिक्का बोलना नेत नित होए खुवार नानक पय किरत कमावना।

अवतर आए कहां तुम कीना, राम को नाम न कबहू लीना, राम न जप हो कमर मत लागे, मर जे बे कहो क्या करो अपागे रखाओ, दोसु करके कुटुंब जीवाया, मरती बार एक सर दुख पाया।

तुम्हारी, सिख मत सबुद्ध तुम्हारी, मंदर शावा तेरे तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहेबा, गुण गावा नित तेरे जी जंत सब शरण तुम्हारी, सर्व चिंत तुद पासे जो तुद पावे सोई गंगा, एक नानक की अरदासे बिलावल महला पहला, आपे शब्द आपे निशान, आपे सुरता आपे जान, आपे कर कर वेखे तान, तू दाता नाम प्रवान, ऐसा नाम निरंजन देओ, हौं जाजक तू अलख्य पे।

परम पुलाने से मनमुख कही है ना उरवार न पारे जिसनू नदर करे सोई जन पाए गुर का शब्द संभाले हर जन माया माय निस्तारे नानक पाग विज मस्तक कालहे मार बिदारे बिलावल मोहल्ला तीज अतुल क्यों तुलिया जाए दूजा होए ता सोजी पाए तेते दूजा नाहीं कोए तेदी कीमत किकू होए गुर प्रसाद वसे मन आए ता को जाने दुबदा जाए रहाओ आप श्राप तसवट्टी लाए आपे परखे आ

पाई, अचिंत नाम बसया मन आई, होमे माया शब्द जलाई, दर सच गुरते शोभा पाई, जगदीश से वो मैं अवर ना काजा, अन दिन अंध होवे मन मेरा, गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाओ, मन की प्रतीत मन ते पाई, पूरे गुरते शब्द बुझाई, जीवन मरण को समसर वेख, बौड़ ना मरे ना जम पिख, करगी मैं सब कोट निधान, सदगुर दिखाए गया अभिमान, सदगी लागा सहज ध्यान, अनदिन गावे एको नाम, इस जुग में वड्याई पाई, पूरे गुरते नाम ते आई, जय देखा तै रहा समाई, सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई, पूरे पाग गुर पूरा पाया, अंतर नाम निधान दिखाया, गुर का शब्द अत मीठा लाया, नानक तृष्ण बुझी मन तन सुख पाया।

माया ग्रस्त परमत है प्राणी, रख ले वो जने अपना जो प्रहलाद हरनास ग्रस्यो, हर रख्यो हर सरना कामन कमन की गत मित कहिए, हर की गे पतत पवन्ना, ओ टोवे टोर हाथ चमचमरे, हार उतरे ओ परे ओ सरना, प्रभ दीन दयाल भगत पवतारन, हम पापी राख पपना, हर दासन दास दास हम करियो, जन नानक दास दासन्ना, बिलावल महला चौथा, हम मूर्ख मुग्ध अज्ञान मती, शरणागत पुरख अजन्मा, कर कृपा रख लेबो।

जे बात होवे नहीं। अपना पला सब कोई बांछ सो करे जे मेरे चितना चितैनी। मन की मत त्यागो हरजन एहा पात कठैनी। आन दिन हर हर नाम त्यावो गुर सतगुर की मत लैनी। मत सुमत तेरे वस स्वामी हम जंत तू पुरख जनतैनी। जन नानक के प्रव करते स्वामी जो पावे ते वे बोलैनी। बलाबल मोहल्ला चौथा आनंद मूल त्यायो पुरखोत्तम। अन दिन अंध आनंदे धर्म राय की कान चुकाई। सब चूके जम के छंदे जप मन हर हर नाम गोविंदे। वड़भागी गुर सतगुर पाया गुण गाए परमानंदे। रघाओ साकत मूड माया के बधक विच माया फिरे फिरंदे। तृष्णा जल तिरत के बांधे जो तेली बल्द पवंदे। गुरमुख सेव लगे से उधरे वड़भागी सेव करंदे।

मुई अनाथ तुमरी शरणाई, कर कृपा कर चरण तिहाई। दया करो बसो मन आए, मुई निर्गुण लीजे लड़लाए रघाओ। प्रभु चित आवे ता कैसी पीड़, हर सेवक नाही जा पीड़। सर्व दुख हर सिमरत नसे, जा कै संग सदा प्रभ बसै। प्रभ का नाम मन तन आधार, विस्तृत नाम होवत तन सार। प्रभ चित आए पूर्ण सब काज, हर विसरत सब काम होता। चरण कमल संग लागी प्रीत, बिसर गई सब।

मिले प्यारे, दो जन होत निखाला, गुर की सेवा सो करे प्यारे, जिसनु हुए दयाला। सफल मूर्त गुरदेव स्वामी, सर्व कला पर पूरे, नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, सदा सदा हजूरे। सुन सुन जीवा सोए तिना की, जिन्हें अपना प्रभ जाता,

साध संग सब दुख मिटाया, रब रहया प्रसम में आपे, हार जप रसना दुख ना व्यापे, रखाओ तिखा भूख बो तप्त व्यापिया, शीतल पय हर हर जस जापिया, कोट जतन संतोख न पाया, मन तृप्ताना हर गुण गाया, देहो भगत प्रप अंतर जामी, नानक की बेनंती स्वामी, बलाबल मोहल्ला पंजवां, गुरपूरा वडभागी पाइये, मिल साधु हर नाम पियाइए, पार ब्रह्म प्रो तेरी सरना, केल बिक काटे पज गुर के चरना, रखाओ आवर कर्म सब लोकाचार, विर साधु संग होए उधार, सिमरत सास्त वेद विचारे।

ओंकार सतगुर प्रसाद मृत मंडल जग साजे ज्यो बालू कर बार बिनसत बार ना लग गई ज्यो कागद बूंदार। सुन मेरी मनसा मने माहे सद देख विचार सिद्ध साधक गिर ही जोगी ताज गए कार बार रखाओ। जैसा सुबना रैन का तैसा संसार दृढ़ मानसा बिनसी है क्या लगे गवार। कहां सो पाई मीत है देख नैन पसार एक चाले एक चाल सै सब अपनी वार। जिन पूरा सतगुर सेवया से अस्थिर हर द्वार जन नानक हर का दास है राख पैज मुरार। बिलावल महला पंजवा लोकन किया वड्याईया बैसंतर पागो जो मिले प्यारा अपना ते बोल करागो जो प्रभ जीव दाल होए तो भगती लागो। लपत रहो मन बासना गुर मिल ए त्याग हो रगाओ करो बेनती अत कनी यो जीव हो मागो। अर्थ आनसा वारिया प्रे निमख सुहागो पंच संग गुर ते छुटे दोह अर रागो हृदय प्रगास प्रगट पया निसबा सर जागो। सारण सुहागण आया जिस मस्तक भागो

भगत आराध्य एक रंग गोविंद गोपाल, राम नाम तन संचया जाका नहीं सुमार, शरण परे प्रभु तेरिया प्रभु की वड्याई, नानक अंत ना पाईए बेअंत गुसाई। बिलावल मोहल्ला पंजवा, सिमर सिमर पूर्ण प्रभु कार्ज पैरास, करतारपुर करता वसै संतन के पास रखाओ, बिघन न को लागता गुर पै अरदास, रखवाला गोविंद राय भगतन की रास, तोट न आवे कदे मूल पूर्ण पंडार, चरण कवन मन तन बसे प्रभ पगम अपार, बस्त कमावत सब सुखी किश ऊन ना दिस, संत प्रसाद पेटे प्रभु पूर्ण जगदीश, जय जयकार सभे करे सज थान सोहय, जप नानक नाम निदान सुख पूरा गुर पाया। बिलावल मोहल्ला पंजवा, हर हर हर आराधिये होइए आरोग, रामचंद की लश्त का जिन मारिया रोग, रघाव गुर पूरा हर जापिए नित कीचे भोग, साध संगत कैवारणे मिलया संयोग, जे सिमरत सुख पाईए बिन से बियोग, नान

रोग मिटाए जीवालयन जा कावड़ प्रताप दोख हमारे बसेयन अपनी कल तारी मन बांझ तो फल दितेयन नानक बलिहारी राग बिलावल महला पंजवां चौपदे दो पदे कर छेवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मोहन सरवनी ए ना सुनाए साकत गीत नाद तुंगाव बोलत बोल अजाए रहाओ सेवत सेव सेव साध सेव सदा करो किरताए अपय दान पावो पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए रसना अघय अघय गुण राती।

खोए खोए खोई हो, मोको सतगुर मंत्र दरड़ाए। अतुल अतुल अतुल न तुलिए, भगत वशल कृपाए। जो

पर पावे एकत सुनत सदा संघरे रहाओ। काज भ्याजन कंचन छाडन बैरी संग हेत साजन त्याग करे। होमन कौरा अनहोमन मीठा दिखिया मैं लपटाए जरे। अंध कूप मैं परे हो प्राणी परम गुबार मुँह बंद परे। कहो नानक प्रभुत दयारा गुर पीटै काढ़े वहां भरे। बिलावल महला पंजवा मन तरसना हर चीना पै आनंदा मिटे अंदेसे।

चरण गहे आमन जान परम पौ नाठा जन्म जन्म के किल विख दहे निरपो होए पजो जगदीसै इहो पदार्थ वड़ भाग लहे कर कृपा पूर्ण प्रदाते निर्मल जस नानक दास कहे बिलावल महला पंजवां सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ कही ना पहुंचे सुलही होए मुआ ना पाक रखाओ काट कुठार खसम सिर काटिया खिन में होए गया है खाक मंदा चितवत चितवत पचया जिन रचिया तिन दीना ताक उत्तर मीत तन किशु न रहो तो छोड़ गया सा पाई साक कहो नानक तिस प्रभ लिखारी जिन जनका कीनो पूर्ण वाक बलावल मोहला पनवा पूरे गुर की पूरी सेव

बनायो आप अपने सेवक की आपे रख प्रभ मेरे को वड प्रताप पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर वस कीने जिन सगले जंत चरण कमल नानक शरणाई आराम नाम जप निर्मल मंत्र।

मूला नसो प्रीत बनी अरहाओ तोरी ना टूटे शोरी ना छूटे ऐसी माधो खिंच तनी दिन सरैन मन माहे बस्त है तू कर कृपा प्रवे अपनी बल बल जाओ श्याम सुंदर को आकत कथा जाकी बात सुनी जन नानक दासन दास कहित है मोहे करो कृपा ठाकुर अपनी बिलावल महला पंजवां हर के चरण जप जाओ कुर्बान गुर मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर ताका हिरदे तर मन ध्यान रखाओ सिमर सिमर सिमर सुखदाता जाका किया सगल जहान रसना रबो एक नारायण ताती दरगे पावो मान साधु संग प्राप्त जाको तिन ही पाया इहो निधान गावो गुण कीर्त नित स्वामी कर कृपा नानक दीजे दान बिलावल महला पंजवां राख लिगे सतगुर की शरण जय जयकार हो आज अंतर पार ब्रह्म तेरो तारण तरण रखाओ विश्वम पर पूर्ण सुखदत सगल समग्री पोखण परण थान तनंतर सर्व नरंतर बल बल जाई हर के चरण जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करण आद जुगाद प्रभ रखदा आया हर सिमरत नानक नहीं डरण।

दूत धुट सब होए खया, गुण अवगुण प्रकश ना बिचारियो, कर कृपा अपना कर लया, अतुल बड़ाई अचुत अबनासी, नानक उचरे हर की जया। बिलावल मोहल्ला पंजवा, बिन पै भगती तरन कैसे, करो अनुग्रोपत उदाहरण, राग स्वामी आप भरोसे रखाओ, सिमर नहीं आवत फिरत मदमावत, दिखया राता स्वान जैसे, औद विहावत अधक मुहावत, पाप कुमावत बुढ़े ऐसे, शरण दुख पंजन पुरख नरंजन, साधु संगत रमन जैसे, केशव कलेश नास अग खंडन, नानक जीवत दर्श दिसे।

आपे मेल लए, जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाओ। तज अभमान अरचिंत बैरानी साधे शरण पए, जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तांते रोग खय। महामुद अजान अज्ञानी रखे थार दए, तो नानक गुरपुरा फिट्यो आमन जान रहे। बिलावल मोहल्ला पंजवां, जीवो नाम सुनी जो सो प्रसन्न पए गुरपुरे, ता मेरी आस पुन्नी रहाओ। पीर गई बंदी मनतीरा मोयो अंध तुनी, उबजो चाओ मिलन प्रापरीतम रहन ना जाए खिनी। अनक भगत अनक जन तारे तिमरे अनक मुनि, अंधले टेक निरथन तन पायो प्रभ नानक अनक गुणी। राग बिलावल

रूप त्यावो नानक द्वारे आयो तौ मैं लालन पायोरी। मोहन रूप दिखावे आ मोहि नींद सुहावे ता मेरी तिखा बुझानी आव मैं सहज समानी मीठी तरह कहानी। मोहन लालन पायोरी अरहाओ दूजा बिलावल महला पंजवा मोरी अंग जाए दर्शन पावत हे राचो नाथ की सहाई संतना आव चरण गहे रहाओ आहे मन अवरना पावे चरनावे चरनावे उलज्यो आलम करंद कमल ज्यो आनस नहीं चाहे एके हर लाहे अन ते टूटिए रिख ते छूटिए मान हर सकूटिए संग साधु उल्टिए।

आप ना बूझे लोक बजावे, मन का अंधा अंध कुमावे, तार कर महल ठौर कैसे पावे। हर जियो सेव गे अंतर जामी, कट कट अंतर जिसकी जोत समानी, तिस नाल क्या चले पै नामी। साचा नाम साचे शब्द जाने, आपे आप मिले चूके अभमाने। गुरमुख नाम सदा सदा वखाने, सदगुर सेवे दूजी दुरमत जाई। औगण काट पापा मत खाई, कंचन काया ज्योति ज्योत समाई। सदगुर मिले वड्डी वडियाई, दुख काट हिरदे नाम साई। नाम रते सदा सुख पाई, गुरमत मान्या करणी सार। गुरमत मान्या मुख द्वार, नानक गुरमत मान्या परवार है साधार। बिलावल महला चौथा अष्टपदियां कार ग्यारवां एक ओंकार। सतगुर प्रसाद आपे आप खाए हो मेटे, आन दिन हरस गीत गवैया। गुरमुख परचय कंचन काया, निरपौ ज्योति ज्योत मिलैया। मैं हर हर नाम आधार रमैया, खेन पल रह न सको बिन नावे। गुरमुख हर हर पाठ पढ़ैया रखाओ, एक गृह द्वार है जाके। अहन से तस्कर पांच चोर लगैया, धर्म अर्थ सब हिर ले जावे। मानमुख अंधले खबर न पैया, कंचन कोट बहुमानक भरिया। जागे ज्ञान तत् लिवलैया, तस्कर हेरू आए लोकाने। गुर के शब्द पकड़ बंद पैया, हर हर नाम पोत भोयता। खेवट शब्द गुर पार लंघैया, जम जागाती नेड़ न आवे। ना को तस्कर चोर लगैया, हर गुण गावे सदा दिन राती। मैं हर से कहते अंत न लहिया, गुरमुख मनवा इकत कर आवे। मिलो गोपाल निशान बजैया, नैनी देख दर्श मन तृप्त। धर्म बाणी गुर शब्द सुनैया, सुन सुन आत्म देव है पीने। रस रस राम गोपाल रवैया, त्रै गुण माया मोहे व्यापे। तुरिया गुण है गुरमुख लहिया, एक दृट सब सम कर जाने। नदरी आवे सब ब्रह्म पसरैया, राम नाम है ज्योत सबाई। गुरमुख आपे अलख लखैया, नानक दीन दयाल पय है। भगत पाए हर नाम समैया, बिलावल महला चौथा। हर हर नाम शीतल जल प्याव हो, हर चंदन वास सुगंध गंधैया। मिल सत्संगत परम पद पाया, मेहरड पलास संघर भुइया। जप जगन्नाथ जगदीश गुसैया, शरण परे से जन उभरे। जो प्रहलाद उधार सुमैया रखाओ, पार अठारे मैं चंदन उत्तम। चंदन निकट सब चंदन हुई, सागत कूड़े उब सुख हुए। मन अभमान विछड़ दूर गईया, हार गात मित करता आपे जाने। साबित हर घर आप बनैया, जिस सदगुर पेटे तो कंचन होवे। जो तो लिखिया सो मिटे ना मिटैया, रतन पदार्थ गुरमत पावे। सागर भगत पंडार खुलैया, गोर चरणी एक सरदा उपजी। मैं हर गुण कहते तृप्त ना पैया, परम बैराग नित नित हर त्याय। मैं हर गुण कहते पाम नहीं कैया, बार बार खिन खिन पल कहिए। आर पार ना पावे परे परैया, शास्त्र वेद पुराण पुकारे। कर्म करो खट कर्म दरड़ैया, मन मुख पाखंड परम विभूते। लोभ लहर नाभ पार बुढ़ैया, नाम जपो नामे गल पावो। सिमरत शास्त्र नाम दरड़ैया, होमे जाय तन निर्मल होवे। गुरमुख परचे परम पद पैया, इहो जग वर्ण रूप सब तेरा। जित लावे से कर्म कमैया, नानक जंतव जाए वाजे। जित फावे तित रहे चलैया। बिलावल महला चौथा, गुरमुख अगम अगोचर त्याया। हौ बल बल सदगुर सतपुरखैया, राम नाम मेरे प्राण मसाए। सदगुर परस हर नाम समैया, जन कीटे हर नाम टकैया। सदगुर की तर लागा जाव, गुर कृपा ते हर दर लहिया रखाओ। यो शरीर कर्म की धरती, गुरमुख मत मत तत कढ़ैया। लाल जवे हर नाम परगासिया, पांडे पाओ पवे तिद अय्या। दासन दास दास होई रही है।

तृतीय ब्रह्मा विष्णुमहेशा देवी देवोपाय वेशा ज्योति जाति गणतन आवे जिन साजी सो कीमत पावे कीमत पाए रहा भरपूर किस नेड़े किस आखा दूर चौथ उपाय चारे वेदा खाणी चारे बाणी भेदा अष्ट दिशा खड़ तीन उपाय तो बूझे जिस आप बुझाए तीन समावे चौथे वासा वरुणत नानक हमता के दासा पंचमी पंच पूत बेताला आप अगोचर पुरख निराला एक परम भूखे मोह प्यासे एक रस चाख सब तृप्ता से एक रंग राते एक मरतूर एक दार कर साचे देख हदूर झूठे को नाही पदनाओ कव न सूचा काला काओ पिंजर पंखी बंदिया कोए शेरी पर में मुक्त न होए तौ छूटे जा खदम छिड़ाए गुरमत मेले भगत दरड़ाए खष्टी खट दर्शन प्रसाजे अनहद शब्द निराला वाजे जे प्रप हावे ता महल बुलावे सब दे फेदे तौ पद पावे तार कर वेश खपे लै जावे साचे साचे साच समावे सप्तमी संतोख शरीर सास मुंद परे निर्मल नीर मजन शील सजर दे विचार गुर के शब्द पावे सा पार मन साचा मुख साचो पाए सच निशाने ठाक न पाए अष्टमी अठ सिद्ध बुद्ध साधे सच ने केवल कर्म आराधे पौन पानी अग्नि बिसराओ तही निरंजन साचो नाओ तिसमय मनुआ रहा लिव लाए परुण तनानक काल न खाए नाओ नौमी नवे नाथ नव खंडा कड़ कड़ नाथ महाबलवंडा आई

गोविंद के सब इश पुजामी राम, नानक उधरे जप हरे सहू का स्वामी राम, रति नेड़े अपने राम संगे ते लोइन नीके राम, प्रापेहित इच्छा पुनिया मिल साजन जी के राम, अमृत रस हर पाया दिखिया रस पीके राम, नानक जल जले समाया ज्योति।

आग उपदेश गुरु सुन मनिया तुर मस्तक पूरा भाग तब दिन सरायन गुण उचर हार हार हर उर लिवलाग तब तन मन हरिया हुआ मन खिड़िया हरिया बाग अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन ज्ञान चिराग जन नानक जीवे देख हर एक निमक कड़ी मुख लाग महला तीजा बलावल तब ही कीजिए जब मुख होवे नाम अराग ना सब सुने जा लागे सहज ध्यान अराग ना छोड़ हर सेविये ता दरगे पाए गे मान नानक गुरमुख ब्रह्म विचारिये तू के मन अवभान पौड़ी तू हर प्रभ आप अगम है सब तुद उपाया।

मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे तो भाई सो मेरा वीर मेल मिल सकी गुण कहो मेरे पाप के ले सतगुर की मत धीर जन नानक की हर आस पुजावे।

लूट लेहे सागत पद खोवे सात जना पगमल मलत होवे पांच पूत जने एक माए ओत पुज खेल कर जगत विहाए तीन गुणा के संग रच रसे इनको छोड़

आर ब्रह्म जप सदा निहाल रखाओ। प्रभ दयाल दूसर कोई नाही, कड़ कड़ अंतर सर्व समाही। अपने दास का हलत पलत सवार, पातत पावन प्रा बिरद तुमार। औध

नारायण साध संग नारायण बारंबार नारायण गायन बस अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गही गोंड मोहल्ला पंजवा जा को राखे रखनहार इसका अंग करे निरंकार रहाओ माद गर्भ में अगना जोहे

संत जपे गुर दियो भगवंत, संगत के मुख उज्जल पए, सगल तान निंदक के गए, सास सास जन सदा सलाहे, पार ब्रह्म गुर बे परवाहे।

अहंकारी जन पर माने निंदक वेकारी गुर कै सिख सदगुरु ते आया जन उबरे निंदक नरक पाया तुन साजन मेरे मीत प्यारे सत बचन वरतै घर द्वारे जैसा करे सो तैसा पाए अवमानी की जड़ सर पर जाए नी तरिया सदगुर तर तेरी करके पारा खो जन केरी कहो नानक तिस गुर बलिहारी जा के सिमरन पैज सवारी राग गोंड।

जाहे वाके अंतर नहीं संतोख बिन सुहागन लागै दोख तन सुहागन महापवीत तपे तपीसर डोले चीत रहाओ सुहागन किरपन की पूती सेवक ताज जगत स्यो सूती साधु कै ठांडी दरबार तरन तेरी मोको निस्तार सुहागन है अत सुंदरी पग नेवर शनक शन हरी जाओ लग प्राण तऊ लग संगे नहे त चली बेग उठ नंगे सुहागन पवन त्रै लिया दस अठ पुराण तीर्थ रस किया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वेदे बड़े भूबत राजे हैं सिद्धे सुहागन उर्वा

खत्री ब्राह्मण सूद के वायस नृतन पाइया गणी सहंस ऐसा दीवा बाले कोय नानक सो बारंगत होय राम करी मनला पहला तुदनु निवण मनन तेरा नाव साज पेट बैसन कौताव ससन तो होवे अरदास ता सुन शब्द बखाले पास नानक बिरता कोई ना होय ऐसी दरगे साचा सोए रखाओ प्राप्त पोता करम पसाओ तू देव मंगत जन चाओ पांडे पाओ पावे तते आए तुरते छोडी कीमत पाए जिन किश किया सो किश करे अपनी कीमत आपे तरै गुरमुख प्रगट हुआ हर राय ना को आवे ना को जाए लोक तिकार कहे मंग

जान नंदूर गुरमुख बूझे सोजी होई अंतर नाम से सुख होई द्वापर दूजे दुबदा होई परम पुराने जाने दोय द्वापर धर्म दोय पैर रखाए गुरमुख होवे ता नाम दृढ़ाए कलयुग धर्म कला एक रखाए एक पैर चले माया मोह वधाए माया मोह अत गुबार ता गुर भेटे नाम उधार था जुग में साचा एक सोई था मैं सच दूजा नहीं कोई साची कीरत सच सुख होई गुरमुख नाम खाने कोई था जुग में ना उत्तम होई गुरमुख विरला बूझे कोई हर नाम त्याए भगत जन सोई नानक जुग जुग नाम।

ओ मैं माणक लाला, तुम देव ते संक न मन हो, हम पुंचे सदा निहाला। हम बारक तुम पिता हमारे, तुम मुख देवो खीरा। हम खिल है सब लाड लडाव है, तुम स गुणी गहीरा। तुम पूर्ण पूरे है संपूर्ण, हम पी संग अघाए। मिलत मिलत मिलत मिल रहया, नानक कहन न जाए। राम कली महला पनवा, कर कर ताल पखाव ज नयन हो। माथे वजे रबाबा, करनो मद बासरी बाजे। जेवा तुन आगाजा, नृत करे कर मनु।

आखार मंडली तरण सुबाई ऊपर गगन चंदोआ पनम चूला करत अकेला जल ते उपत हुआ पंच तत कर पुत्रा कीना किरत मिलावा हुआ चंद सूरज दु जरे चिरागा चौ कुंड पीतर राखे दस पातो पंच संगीता एक पीतर साते पिन पिन हुए पाद दिखावे सभो निरारी पाखे हर कर नृत होवे दिन राती हर कड़ वाजे तूरा एक नचावे एक पवावे एक आए जाए हुए तूरा कहो नानक

अगली किस खबर न पाई, रोवन हार पे ऊड़ सधाई, परम हो के बांधे बंद, सुबन पया पगलाए अंध, यो तो रजन रचिया करतार, आवत जावत हुगम अपार, न को मुआ न मरने योग, न बिन से अबनासी होग, जो यो जानो तो यो नाहे, जान नगारे को बल जाओ, कहो नानक गुर परम चुकाया, ना कोई मरे न आवे जाया, राम करी मोहल्ला पंजवा, जब गोविंद गोपाल लाल, राम नाम सिमर तू जीव है, फिर ना खाई महाकाल रखाओ, और जन्म प्रम प्रम प्रम आयो, बड़े पाग सा संग पायो, बिन गुर पूरे नहीं उधार, बाबा नानक आख

भय परया जप नाथ दिन रहनाई तेरी खिंता दो दिहाई रहाओ गहरी बिपूत लाए बैठा ताड़ी मेरी तेरी मुंद्रा ताई मांगे टूका तृप्त न पावे नाद छोड़ जाचे लाज न आवे क्याल चित जोगी आसन तेरा सिंगी वाजे नित उदासेरा गुर गुर कीते बूझ न पाई फिर जोगी आवे जाई जिसन हुआ नाथ कृपाला रह रास हमारी गुर गोपाला नामे खिंता नामे बस्तर जन नानक जोगी हुआ अस्थिर क्यों जप्या नाथ दिन रहनाई हुन पाया गुर गोसाई रहाओ दूजा राम कली महला पनवा करन करा मनसोई आन ना दिसे कोई ठाकुर मेरा सूढ़ सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना ऐसो रे घर समीठा गुरमुख किने विरले डीठा रहाओ निर्मल जोत अमृत नाम पीत अमर पय ने काम तन मन शीतल अग्नि निवारी अंधरू प्रगटे संसारी क्या देवो जा सब कुछ तेरा सद बलिहार जाओ लख बेरा तन मन जियो पिंड दे साजिया गुर कृपा ते नीच निवाजिया खोल किवारा महल बुलाया जैसा सा तैसा दिखलाया कहो नानक सब पड़दा टूटा हौ तेरा तू मैं मन मूठा राम कली महला पंजवा सेवक लायो अपनी सेव अमृत नाम दियो मुख देव सगली चिंता आप निवारी जिस गुर कहो सद बलिहारी ताज मारे पूरे सदगुर बाजे अनघ तूरे सदगुर रहाओ महिमा जाकी गैर गंभीर होए निहार देज तीर जाके बंधन काटे राय सो नर भौर न जो नी पाए जाके अंतर पलट्यो आप ताको नाही दुख संताप ला रतन से पाले परया सगल कुटम ओ जन ले तरया नाह।

चलना, राज रहो तू संग सुपना रहाओ, बाल व्यवस्था बारक अंध, पर जूबन लागा दुर्गंध, तृती व्यवस्था संचे माए, बिरद पया छोड़ चल्यो पछताए, किरण काल पाई दुर्लभ देहे, नाम बिहूनी होई खेहे, पशु प्रेत मुग्ध ते बुरी, तिसे ना बूझे जेन ए श्री, सुन करतार गोविंद गोपाल, दीन दयाल सदा कृपाल, तुम्हें छुड़ावो छुटके बंद, बख्श मिलावो नानक जग अंध।

समारे, अंत की बार ऊठ सिधारे, ना बिना सब चूठ परानी, गोविंद भजन बिन अवर संगराते, ऐसा माया मूठ परानी रखाओ, तीर्थ नाए न उतर समायल, कर्म धर्म सब हो में फैल, लोक बिचारे गत नहीं होए, ना बिहूने चल सहे रोए, बिन हर नाम ना टूटस पटल, सो दे शास्त्र सिमरत सगल, सो नाम जपे आप जपाए, सगल फला से सुख समाए, रखन हारे रख हो आप, सगल सुखा प्रतुम रहे हार।

रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनक रूप रंग भोग रस गुरमुख नाम निमख हृदय बसे हर के नाम की वड्याई कीमत कहन न जाई रखाव तोर वीर तीर जमद पूरा तेज समाद तुन गैर गभीरा सदा मुक्त ताके पूरे काम जा कर दिवसे हर नाम सगल सुख आनंद आरोग समदर्शी पूर्ण निर्जोग आए न जाए डोले कतनाही जा के नाम बसे मन माही दीन दयाल गोपाल गोविंद गुरमुख जपिए उतरे।

पटल, गुर का शब्द अमृत रस पियो, ता तेरा होए निर्मल जियो, सोधत सोधत सोध बिचारा, बिन घर भगत नहीं छुटकारा, सोहर भजन साध कै संग, मन तन रापे हर कै रंग, तोड़ सियाणप बहुच तराई, मन बिर हर नावे जाए ना काई, दया धारी गोविंद गुसाई, हर घर नानक टेक टकाई, राम करी महला पंजवा, संत कै संग राम रंकेल, आगे जमस्यो होए ना मेल, अंग बुद्ध का पया विनाश, दुर्मत हो

सदा आनंद न हो वी सोग, कभू न व्यापे हो मैं रोग। खोजो संतो हर ब्रह्म ज्ञानी, बिस्मन बिस्म पय बिस्मादा, परम गद पावे हर सिमर प्राणी ही रखाओ। गण मन देखो सगल विचार, ना बिना को सके ना तार। सगल उपावन चल है संग, पवजल तरिगे प्रभ के रंग। देही तोय न उतरै मैल, होमे व्यापे दुबदा फैल। हर हर औखद जो जन खाए, ताका रोग सगल मिट जाए।

मेरा प्रभ पूर्ण परमेश्वर स्वामी कड़का राता मेरा प्रभ रहाओ ताकि गई मन ओट बंधन ते होई छोट हृदय जप परमानंद मन माहे पय आनंद तारण तरण हर शरण जीवन रूप हर चरण संतन के प्राण आधार ऊंचे ते ऊंच अपार सुमत सार जित हर्ष मेरी जय कार कृपा जिया पे दीजे सुख सहज आनंद हरनाओ नानक जपया गुर मिलनाओ राम कली मोहल्ला पंजवा सगल सियान पछाड़ कर सेवा सेवक साज अपना आप सगल मिटाए मन चिंदे सही फल पाए हो सावधान अपने गुरस्यों आसा मनसा पूर्ण होवे पावे सगल निधान गुरस्यों रखाओ दूजा नहीं जाने कोय सदगुर निरंजन सोए मानुख का कर रूप ना जान मिली निमाने मान गुर की हर टेक टिकाए अवर आशा सब लाहे हर का नाम।

सागर तरियो बाशर खोज खेद न पायो नए पुनरोज सिंध समायो कट के माघे करण हार कहो किस अज जनाघे जो छूटो तो जाए पयाल जो कढ़ो तो नजर निहाल पाप पुन हमारे बस नाहे रसक रसक नानक गुण गाहे राम कली मोहल्ला पंजवा ना तन तेरा ना मन तोहे माया मोहे बया पिया तोहे उदम करे गाडर जो शेल अचिंत जाल काल चक्कर पेल हर चरण कमल सरनाए मना राम नाम जप संग सहाई गुरमुख पावे साज तना रहाओ ऊने काज न होत पूरे काम क्रोध मद सदगी चूरे करे विकार जीरे के ताई गाफल संग न तहुआ जाई तरत तो अनक छल जाने कौडी कौडी को खाग सिर छाने जिन दिया तसे न चेते मूल मिथ्या लोभ न उतरे सूल पार ब्रह्म जब पय दयाल जो मन हुआ सा दरबार हस्त कमल लड़ली नू लाए नानक साचे सा समाए राम कली मोहल्ला पंजवा राजा राम की शरणाए निरपो पय गोविंद गुण गाव साध संग दुख जाए रघाओ जाके राम बसे मन माही तुजन दुत्र पेखत नाही सगले काशवारे अपने हर हर नाम रसनित जपने जिसके मस्तक हाल गुर तरे तो दास अंदेशा का ही करे जन्म मरण की चूकी कान पूरे गुर ऊपर कुर्बान गुर परमेश्वर पेट निहाल तो दर्शन पाए जिस होए दयाल पार ब्रह्म जिक्र पा करे सा संग सो पव जल तरे अमृत पीवो साध प्यारे मुख उजल साते दरबारे अंध करो ताज सगल विकार नानक हर जप उतर हो पार राम कली मोहल्ला पंजवां ईंधन ते बैसंतर भागे माटी को जल दह दिस जागे ऊपर चरण तले आकाश कड़मे सिंध की ओ प्रगास ऐसा समर्थ हर जीव आप निमकन बिसरे जी भगतन कै आठ पैर मनता को जाप रहाओ प्रथमे माखन पाछे दूध मैलू कीनो साबन सूद पय ते निरपो डरता फिरे हुंदी कौ अणहुंदी हिरे देही गुप्त बदेही दीसे सगले साज कर जग दीसे ठगन हार अन ठगदा ठग बिन वखर फेर फिर उठ लागे संसभा बिन करो बखियान सिमरत शास्त्र वेद पुराण ब्रह्म विचार विचारे कोय नानक ताकी परम गद होय राम कली मोहल्ला पंजवां जो तुझ पावे सो थिया सदा सदा हर की शरणाई प्रभ नाही आन बिया रहाओ पुत कलतर लक्ष्मी दिसे इन में किशु न संग लिया दिखे ठकोरी खाए पुलाना माया मंदिर त्याग गया निंदा कर कर बहुत विगूता गर्भ जो में कृत पया पूर्व कमाने छुडे नाही जम दूत ग्रास्यो महा भया बोले झूठ कमावे अवरा तिस ना बूझे बहुत हया असाध रोग उपजिया संदूखन दे बिनासी महा खया जिने निवाजे तिन ही साजे आपे कीने संत जया नानक दास कंठ लाए राखे कर किरपा पार ब्रह्मया राम कली मोहल्ला पंजवां ऐसा पूरा गुरुदेव सहाई जाका सिमरन तिरथा ना जाई रहाओ दर्शन पेखत होए निहाल जाकी तूर काटे जमजाल चरण कमल बसे मेरे मन के कार्ज सवारे सगले तन के जाके मस्तक राखे हाथ प्रभ मेरो अनाथ को नाथ पतत उदाहरण कृपा निधान सदा सदा जयगे कुर्बान निर्मल मत दे जिस दान तजे विकार बिन से अपमान एक तिहाई के साध के संग पा बनासे नाम कै रंग गुर परमेश्वर सगल निवास कट कट रब रया गुणतास दर्श दे तारो प्रव्यास नित नानक चितवे सच अरदास।

जन्मे त्यो मरण पया, ज्यों रस पो किए तेता दुख लागे, नाम सार भव जल पया, तन तन देखत गर्भ गया, तनक कामनी सुहेत वधाए, की नाम सार है परम गया, रहाव जत सर संजम सील ना राखिया, प्रेत पिंजर में कष्ट पया, ओ नदान इसनान ना संजम, सा संत दिन बाद जया, लाल लागे नाम सारियो, आवत जावत जन्म गया, जा जम ताए केस गए मारे, सुरत नहीं मोकाल गया, ऐस निंदा ताद पराई, हृदय नाम ना सर्व दया, बिन गुर शब्द ना गत पद पाव है, राम ना बिन नरक गया, खिन में वेश करें टुआ ज्यों, मोह पा में गलत गया, एत पुद माया देख बसारी, मोह माया के मगन पया, करे विकार विथार कनेरे, तोरत शब्द बिन परम पया, हम में रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया, सुख संपद को आवद देखे, सागत मान अब महान भया, जिसका यो

ताहु रोग सोग परमीजा, ताहु पवन तार जात बेहाय, संत बेहावे कीर्तन गाय, ताऊ बेहावे दिन रैन चाल, ताऊ बेहावे सो पिड़माल, ताऊ बेहावे बाल पढ़ावत, संत बेहावे हर्ष गावत, ताऊ बेहावे नट नाटक।

गर्भूट माद गर्भ संकट ते शूट जाका नाम सिमरत को जाए तैसे संत जना राखे घर राय ऐसे राखन गार दयाल जत का देखो तुम प्रतपाल रखाओ जल पीजो तिखा मिटंत तन बिसे ग्रे आवत कंत लोभी का तन प्राण आधार त्यों हर जन हर हर नाम प्यार किसानी जो राखे रखवाला मात पिता दया जो बाला प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए त्यों हर जन राखे कंठ लाए जो अंदले पेगत होए आनंद गूंगा भगत गावे बोचंद पिंगल पर्वत परते पार हर के नाम सगल उदार जो पावक संग सीत को नास ऐसे प्राशित संत संग विनाश जो साबन कपर उजल होत नाम जबत ता प्रम पखोत जो चक्री सूरज की आस जो चात्रक बूंद की प्यास जो कुरंक नाद कर्ण समाने त्यो हर नाम हर जन मने सुखाने तुमरी कृपा ते लागी प्रीत दयाल पहता आए चीत दया तारी तन तारण हार बंधन ते होई छुटकार तब थान देखे नैन अलोय जिबन दूजा अवर न कोय प्रम पे छूटे गुर प्रसाद नानक पेख्यो सब समात राम कली महला पंजवा जी जंत सब पेखिये प्रसगल तुम्हारी तारना यो मन हर के नाम आधार ना रहाओ खेन में ताप उतापे कुदरत तब करते के कारना काम क्रोध लोभ चूड़ निंदा साधु संग बिदारना नाम जत मन निर्मल होवे सुखे सुख गुदारना भगत शरण जो आवे प्राणी इस ईहा उहा ना हारना सुख दूस मन की बिरदा तुम ही आगे सारना तू दाता सबना जिया का अपन की आपालना अनकबार और जन ऊपर नानक वंजे वारना राम कली महला पंजवा अष्टपदी एक ओंकार सदगुर प्रसाद दर्शन पेड़त पाप सब नस हरस्यों दे मलाई मेरा गुर परमेश्वर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते हुए सुखाई रहाओ सगल दूख का डेरा पन्ना संत तूर मुख लाई पद पुनीत किए खिन पीतर अज्ञान अंधेर वंजाई कारण कारण समरथ स्वामी नांग तिसरनाई बंधन तोड़ चरण कम दृढ़ाए एक शब्द लवलाई अंध कू बिखिया ते काढ़ियो साच शब्द बने आई जन्म मरण का सहसा चूका बहौड़ कथो ना ताई नाम रसायन इव मना राता अमृत पी त्रताई संत संग मिल कीर्तन गाया नित लव से आ जाई पूरे गुर पूरी मत दीनी हर बिन आन ना पाई नाम धन पाया वडभागी नानक नरक न जाई काल सियाण पुगतना मेरी पूरे गुरु कमाई जत स संजम सुच गय सोई आपे करे कराई पुत्र कलत्र मां बिखिया मैं गुर साचे लाए तराई अपने जीते आप संभाले आप लिगे लड़लाई सह तर्म का बेड़ा बंधया अवजल पार पवाई बेसुमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई अकाल मूर्त अजोनी संभो कल अंधकार दीपाई अंतर जामी जीवन का दाता देखत तृप्त अगाई एकंकार निरंजन निरपो सब जलत रहा सुमाई भगत दान भगता को दीना हर नानक जाते माई राम कली महला पंजवा श्लोक सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिमरत एक मन तारा ताराम प्यारे हर प्रेम भगत बन आई संतो सदगुर खेत निवाही संतो हर नाम लाहा दास को दिया सगली त्रिसन उलाही संतो रहाओ खोजत खोजत लाल एक पाया हर कीमत पहनना जाई संतो चरण कम से लागो त्याना साचे दर्श समाई संतो गुण गावत गावत पय निहाला हर सिमरत त्रिवत अगाई संतो आत्मराम रव्या सब अंतर कत आवे कत जाई संतो आद जुगादी है पीहोसी सब जिया का सुखदाई संतो आभ्यंत अंत नहीं पाईये पूरया सब ठाई संतो मीत साजन माल जोबन सुत हर नानक बाप मेरी माई संतो राम कली महला पंजवा मन बज क्रम राम नाम चितारी भूमन केर महत बिगड़ी गुरमुख नांग पार उतारी रगाओ अंतर सूखा बार सूखा हर जा मलन पैद सुटारी जिस ते लागे तने निवारे
प्रभु जी अपनी कृपा तारी उधरे संत परे घर सरणी पर बिरसे महा अहंकारी साधु संगत यो फल पाया एक केवल नाम आधारी ना कोई सूर ना कोई हीना ता प्रगटी जो तुम्हारी तो समरथ अकथ अगोचर रव्या एक मुरारी कीमत कौन करे तेरी करते प्रभ अंत न पारा वारी नाम दान नानक वडियाई तेरिया संत जना रे नारी राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मरवजिया वाधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया शब्द ता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना अंगीकार ओ करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी तो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेब क्या नाही कर तेरा करता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिरत सदा तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आय वसया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिदिया ए वडियाईया कहे नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सुपागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते कार कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कहो से नाम हर के लागे कहे नानक तहे सुख हुआ तित कर अनहद वाजे साची लवे बिन दे निमाणी लवे बाजहो क्या करे वेचारिया तुद बास समरथ कोए नाही कृपा कर बनवारिया केस नौ होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया कहे नानक लेवे बाजों

नित नित मंगल सुनिए राम कली मोहल्ला पंजवा हर हर ताए मना खिन नाम सारिये राम रामा राम रमा कंठ उतारिये उतार हर हर पुरख पूर्ण पार ब्रह्म निरंजनो भय दूर करता पाप हरता दुसे दुख पाव खंडनो जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद विचारिये बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरण चितारिये चरण कमल आधार जन का आसरा माल मिर्ख पंडार नाम अनंत तरा नाम नरहर निदान जिनके रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्यायना केल खरना ना पुने चरना ना जमकी त्रास हरा बिनवंत नानक राज जन की चरण कमल आसरा गुण बेंत स्वामी तेरे कोई ना जान देख चलत दयाल सुन भगत वखानई जी जंत सब तो त्यावे पुरख पद परमेसरा सर्व जाचक एक दाता करना मैं जगदीसरा साधु संत सुजान सोई जिसे प्रभु जी मानई बिनवंत नानक करो कृपा सोए तुझे पछानई।

आठ पैर अपना प्रभ सिमरे, एको नाम त्याए राम, त्याए सो प्रतरे पवजल रहे आमन जाना, सदा सो कल्याण कीर्तन लगा मीठा पाना, तब इश कुन्नी आस पूरी मिले सद गुरपूरिया, बिनवंत नानक प्रभ आप मेले फिर नाही दुख वसूरिया। राम कली महला पंजवा शांत सलोक, चरण कमल शरणागति अंत मंगल गुण गाम, नान प्रभ आराधिये विपत निवारण राम शांत, प्रभ विपत निवारण त्रिवन अवरना कोए जियो, सदा सदा हर सिमरिये जल थल महियल सोए जियो, जल थल महियल पूर रहे एक निमक मनो ना विसरे, गुर चरण लागे दिन सुभागे सर्व गुण जगदीशरे, कर सेव सेवक दिन सरैणी पावे सो होए जियो, बल जाए नानक सुखे दाते प्रकाश मनतन होए जियो। श्लोक हर सिमरत मन तन सुही बिनसी दुतिया सोच, नानक टे गोपाल की गोविंद संकट मोच, शंत पय संकट काटे नारायण दयाल जियो, हर गुण आनंद गाए प्रभ दीना नाथ प्रतपाल जियो, प्रतपाल अचुत पुरख एको तिसे सो रंग लागा, कर चरण मस्तक मेल लीने सदा आनंदन जागा, जियो पिंड गृहथान तसका तन जोबन तन माल जियो, ससदा बल जाए नानक सर्वजिया प्रतपाल जियो। श्लोक तदन उत्तरे हर हरे गुण गोविंद वखियान, नांग पगड़ी टेक एक परमेश्वर रखे निदान, शंत तो स्वामी प्रवरख को अंचलता के लाग जियो, बस साधु संग दयाल देव मन की मत त्याग जियो, एक ओढ़ कीजे जियो दीजे आस एक तरणी तरे, ता संगे हर नाम रंगे संसार सागर सब तरे, जन्म मरण विकार छूटे फिर ना लागे दाग जियो, बल जाए नानक पुरख पूर्ण फिर जाका सोहाग जियो। श्लोक धर्म अर्थ हर काम ओक मुक्त पदार्थ नाथ, सगल मनोरथ पूरे नानक लिखिया माथ, शंत सगल इश मेरी पुनिया मिलिया निरंजन राय जियो, अंध पयावड पागी हो गृह प्रगटे प्रभ आए जियो, गृह लाल आए पूर्व कुमाए तागी उमा क्या गणा, बेंत पूर्ण सुख सहज दाता कमल रसना गुण पणा, आपे मिलाए गए कंठ।

काटन पय हरण तुसागर हर राय दीन दयाल दुख पंजनो नानक नीत त्याए शांत जस गावोड़ पागी हो कर कृपा भगवंत जियो रुत्ती महामूर्त कड़ी गुण उचरित सोभावंत जियो गुण रंग राते तन तेजन जिनी एक मन त्याया सफल जन्म पया तिनका जिनी सो प्रापाया ओ निदान ना तुल किरिया हर सर्व पापा हंत जियो बिनवंत नानक सिमर जीवा जन्म मरण रहंत जियो श्लोक उदम अगम अगोचरो चरण कमल नमस्कार कथनी सा तुद पावसी नानक नाम आधार संत सरण साजन परो स्वामी सिमर अनंत तू केते हरियाथिया नानक जप भगवंत संत रुत सरस बसंत महाचेत वैसा सुख मह जियो हर जियो नहो मिलया मौलिया मंतन सह जियो कर नहो नेचल अंध सखिये चरण कमल पर भोलिया सुंदर सुगड़ सुजान बेता गुण गोविंद अमूलिया वड़पाग पाया दुख गवाया पई पूर्ण आस जियो बिनवंत नानक शरण तेरी मिटी जम की त्रास जियो श्लोक सा संत मिन प्रमोई करती कर्म अनेक कोमल बंधन बांधिया नानक कर्म है लेख जो पाने से मिलिया विछोड़े पिया नानक प्रसरणागति जाकावड़ प्रताप संत ग्रीख मरुत अत गाखड़ी जेठ अखाड़े काम जियो प्रेम शोध दुहागणी दृष्ट न करी राम जियो ने दृष्ट आवे मर्त हावे महागार्भ मुठिया जल बाज मछली तड़फड़ावे संग माया रुठिया कर पाप जोनी पय पीत होई दे सासन जाम जियो बिनवंत नानक ओढ़ तेरी राग पूर्ण काम जियो श्लोक सदा लागी संग प्रीत में एक तिल रहन न जाए मन तन अंतर राव रहे नानक सह सुपाए कर गैली नी साजने जन्म जन्म के मीत चरने दासी कर लई नानक प्रभित चीत शंत रुत बरस सुहेलिया सावन भादवे आनंद जियो तन उन उठे जल थल पूरिया मकरंद जियो प्रापुर रहया सर्वठाई हर नाम नवनिध गृह परे सिमर स्वामी अंतर जामी और समूहा सब करे प्रे रंग जागे नय छिद्र लागे किरपाल साधबक सिंध जियो बिनवंत नानक हर कंत पाया सदा मन पावंद जियो श्लोक आस प्यासी मैं फिरो ता पेखो गोपाल है कोई साजन संत जन नानक प्रा मेलन हार बिन मिलबे सांत न उपजे तिल पल रहन न जाए हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए शंत रुत सरद अडंबरो असूकत के घर प्यास जियो खोजंती दर्शन फिरत का मिल गए गुण तस जियो बिन कंत प्यारे नए सूख सारे हार कंगन त्रिग बना सुंदर सुजान चतर बेती साध बिन जैसे तना ईत पुत दैदस अलोकन मन मिलन की प्या प्यास जियो बिनवंत नानक तार कृपा मिल हो प्रा गुण तस जियो श्लोक जलम जी शीतल पय मनतन उपजी सांत नानक प्रभ पूर्ण मिले द्वितीया बिरसी प्रांत तद पठाए आप हर हम तुमते नाही दूर नानक प्रम पै मिट गए रमण राम पर पूर शंत रुत सिसियर शीतल हर पलटे मंगर पोहे जियो जल बुझी दस पाया मिसे माया त्रो जियो अवका पूरे मेर हजूर हर चरण सेवक सेवया हार डोर सीगार सब रस गुण गाव अलख पेवया पाओ भगत गोविंद बांशत जमना साके जोहे जियो बिनवंत नानक प्रभ आप मेली तैरा प्रेम शो जियो श्लोक हर तन पाया सुहागणी डोल तनाही चीत संत संजोगी नानका गृह पलटे प्रमीत नाल बिनोद आनंद कोट प्रे प्रीतम संग बने मन बांशत फल पाया हर नानक ना पने शंत हिम कर उत्मन पावती माघ फगन गुणवंत जियो सखी सहेली गाओ मंगलो ग्रे आए हर कंत जियो ग्रे लाले आए मनते आए तेज सुंदर सोईया वाण त्रेण त्रिपौन पय हरिया देख दर्शन मोईया मिले स्वामी इश पुन्नी मन जपया निर्मल मंत जियो बिनवंत नानक नित करो रलिया हर मिले श्री तरकंत जियो श्लोक संत सहाई जी के फजल तारण हार तब ते ऊचे जानिए नानक नाम प्यार जिन जानिया
ते ही तरे ते सूरे से वीर नानक तिन बिहारण हर ज उतरे तीर शंत चरण बराजत सब उपरे मिटिया सगल कलेस जियो आमन जामन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो हर अंग राते सहज माते इलना मन ते बीसरे आप सरणी परे चरणी सर्वगुण जगदीसरे गोविंद गुण श्री रंग स्वामी आदको आदेश जियो बिनवंत नानक मया तारो जुग जुगो एक वेश जियो राम कली महला पहला दक्षिणी ओ अंकार एक ओ अंकार।

वेद निर्मय ओंकार शब्द उदरे ओंकार गुरमुख तरे ओ नम अखर सुनो विचार ओ नम अखर निरपमसार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाओ सस्से सब जग सहज उपाय तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त होवे चुन ले मानक मोती समझे सूझे पड़ पड़ बूझे अंत निरंतर साचा गुरमुख देखे साच संभाले बिन साचे जग काचा तदे धर्म तरे तरमापुर गुणकारी मन तीरा तदे तूल पड़े मुख मस्तक कंचन पए मनूरा तन तरणी तर आप अजोनी तोर बोसज पूरा करते की मित करता जाने कहे जाने गुरसूरा ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिग खाया गुर रस गीत बाद नहीं पावे सुनिए गहे गंभीर गवाया गुरस कहे अमृत लया मन तन सा सुखाया आपे गुरमुख आपे देवे आपे अमृत पी आया एक को एक कहे सब कोई होमे गर्भ वे आपे अंतर बार एक पछाणे क्यों कर मैल संजापे प्रभ नेड़े हर दूर ना जानो एक को सृत सबाई एकंकार अवर नहीं दूजा नानक एक सुमाई इस करते को क्यों गए राखो अफरे तुल्यो ना जाई माया के देवाने प्राणी झूठ ठगौरी पाई लाभ लोभ मोहताज विगूते इवता फिर पछताई एक सरेवे ता गत मित पावे आमन जान रखाई एक अचार रंग एक रूप पौन पानी अग्नि असरूप एक को पावर पवे त्यो लोए एक को बूझे सूझे पत होए ज्ञान जान ले समसर रहे गुरमुख एक विरला को लहे जिसनु दे कृपा ते सुख पाए गुरु द्वारे आग सुनाए ऊर्म तूर्म जोत उजाला तीन पण में गुर गोपाला उगव्या असरूप दिखावे कर कृपा अपने कर आवे ऊन बरसे निजर तारा उत्तम तब सवारण हारा इस एक का जाने पेओ आपे करता आपे देओ उगवे सूर असर संघारे ऊचो देख शब्द बिचारे ऊपर आद अंत लोए आपे करे कथे सुने सोए ओ विधाता मन तन दे ओ विधाता मान मुख सोए प्राप जग जीवन अवर न कोए नानक नाम रते पद होए अराजन राम रवे हितकार रण में लूजे मनुआ मार रात दिन अंत रहे रंगराता तीन पौन जो चारे जाता जिन जाता सो तिस ही जेहा आत्म निर्माल शीश देहा रे श्री राम हृदय पाए अंतर शब्द साथ लिवलाए रोस न कीजे अमृत पीजे रहन नहीं संसारे राजे राय रंक नहीं रहना आए जाए जुग चारे रहन कहते रहे न कोई इस पे करो बेनंती एक शब्द राम नाम निरोधर गुरदेवे पतमती लाज मरंती मर गई भूगुट खोल चली साध दीवानी बाबरी सिरते संक टली प्रेम बुलाई रलीसियो मन में शब्द आनंद लारती लाली पई गुरमुख पई निचिंद लहा नाम रतन जब सार लब लोभ बुरा अहंकार लाड़ी चाड़ी लाए तबार मानमुख अंधा मुग्ध गवार लाहे कारण आया जग होए मजूर गया ठगाए ठग लहा नाम पूंजी वे साहो नानक सची पात सच्चा पात साहो आए विगूता जग जम पंथ आई ना मेटन को समरथ आस सहल नीच कर होए आस देख निवे जिह दोए आस होए तामुक्त से आना भगत बिहुना जग बोराना सब में वरते एक को सोए जिसनु कृपा करे तिस प्रगट होए जुग जुग थाप सदा निर्वैर जन्म मरण नहीं तंदा तैर जो दिसे सो आपे आप उपाय आपे कर थाप आप अगोचर तंदे लोई जुग जुगत जग जीवन सोई कर आचार सच सुख होई ना विहुना मुक्त के होई।

आधार सर्वे थान सनंतरी तू दाता दातार जय देखा तै एक तू अंतना पारावार थान सनंतर रभरया गुर शब्दी विचार अण मंगया दान देवसी वड्डा अगम अपार दया दान दयाल तू कर कर देखन हार दया करे प्रा मेल रहे खिर में टाए उसार।

मन जा गोटी सत संतोख संजम है नाल नानक गुरमुख नाम समाल कमन सो गुप्ता कमन सो मुक्ता कमन सो अंतर बहार जुगता कमन सो आवे कमन सो जाए कमन सो तिरफुन रहा समाए घट घट गुप्ता गुरमुख मुक्ता अंतर बहार शब्द सो जुगता मन मुख बिन से आवे जाए नानक गुरमुख साज समाए क्यों कर बादा सरपन खद क्यों कर खोया क्यों कर लादा क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा क्यों तत् विचार ऐसो गुरु हमारा दुर्मत बादा सरपन खद मनमुख खोया गुरमुख लादा सतगुर मिले अंधेरा जाए नानक हो मैं मेड़।

कचियले सुन कहां कर वासो ज्ञान की मुद्रा कमन कचियले घट घट कमन निवासो काल का ठीका क्यों जिलाईले क्यों निरभो कर जाइए सहे संतु का आसन जाने क्यों शेदे बैराइये गुर कै शब्द होमे बिख मारे ता निरकर हो वे वासो जिन रच रचिया तेस शब्द पछाण नानकता का दासो कहां ते आवे कहां यो जावे कहां यो रहे समाई एस शब्द को जो अर्थ आवे इस

हुक्मे रहे समाई पूरे गुरते साज कमावे गात मित सब दे पाई आद कौ बिस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया अकल्पत मुद्रा गुर ज्ञान विचारियले धड़कड़ साचा सर्ब जिया गुर बचनी अवगत समाइये तत निरंजन सहज लहे नानक दूजी कारना करनी सेवे सिख सो खोज लहे हुक्म बिस्माद हुक्म पछाणे जी जुत सा जाने सोई आप मेट निरालम होवे अंतर साच जोगी कहिए सोई अवगतो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण।

सब तीर्थ गह ओ तपा कैसे परमगत लह गुर प्रसादी को सच कमावे नानक सो तपा मोखंतर पावे महला तीजा सो तपा ये ओ तप का ले सदगुर नु मिले शब्द समाले सदगुर की सेवा यो तप प्रवान नानक सो तपा दर्घ पावे मान पौड़ी रात दिन उपायन संसार की वर्तन गुरमती कड़ चानना आनेर बिनासन हुक्मे ही सब साजियन रव्यासा वन त्रेण सब कुछ आपे आप है गुरमुख सदा हर पान सब देखी सोजी पई सच्चे आप बुझाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई श्लोक महला तीजा अभ्यागत ए न आखियन जिनके चित में भरम ते दे दिते नानका ते हो जेगा तर्म आपए निरंजन परम पद ताका भूखा होए जिसका पूजन नानका विरला पाए कोए महला तीजा अभ्यागत ए न आखियन जे पढ़ कर पूजन करेन उदरे कारण अपने बैले पेख करेन अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौन करेन पाल लहन सो अपना निरकर रहन करेन पौड़ी अंबर तरतब छोड़ेन वे सच्चा असराओ घर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ सब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच सुनाओ सच्चा आप तगत सच्चा बै सच्चा करे न्याओ सब सचो सच वर्तदा गुरमुख अलख लखाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई श्लोक महला तीजा रैनायर माय अनंत है कूड़ी आवे जाए भाणे चले अपने बहुती लय सजाए राय नायर में सब किस है कर्मी पल्ले पाए नानक नौनद पाई है जे चले तसे रजाए महला तीजा है जे सतगुर ना सेवे हो विच होमे जन्म विनाश रसना हरसना चखे हो कमल न होयो परगास बिख खादी मनमुख मोआ माया मोहे विनाश एक सहर के नाम वेण त्रिग जीवन त्रिगवास जा आपे नदर करे पर सच्चा ता हो वेदा सुनदास ता अनदन सेवा करे सदगुरु की कभे न छोड़े पास जो जल में कमल अलिप तो वर्त है त्यों विचे गिरे उदास जन नान करे कराया सबको क्यों पावे तिब हर गुण तास पौड़ी छत्ती जुग गुबार सा आपे ग्रंत कीनी आपे सृट सब साजियन आप मत दीनी सिमरत सास्त साजियन पाप पुन गणत गणीनी जिस बुझाए सो बुझसी सच्चे शब्द पतीनी तबे आपे आप वर्तदा आपे बगस मिलाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई श्लोक महला तीजा यो तन सबो रत है रत बिन तन न होए जो से रते अपने तेन तन लोभ रत न होए पए पए तन खीन होए लोभ रत विच हो जाए ज्यों बैसंतर तात सुध होए त्यों हरका पाओ दुर्मत मैल गवाए नानक तेजन सोने जो रते हारंग लाए महला तीजा राम कली रामन वसया ता बनया सीगार गुर के शब्द कमल बिरसया ता सौंपया भगत भंडार परम गया ता जागया चूका अज्ञान अंधार तेसनु रूप अत अगला जिस घर नाल प्यार सदा रवे तेरे अपना तोबावंती नार मनमुख सीगार ना जाननी जसन जन्म सवहार
फिर घर भगती सी गार कर नित जम्मे हुए खुवार सहे सारे विच सोभ ना पाए नी अगे जे करे तो जाने करतार नानक सच्चा एक है दो बच गए संसार चंगे मंदे आप लायन सो करन जे आप कराए करतार महला तीजा बिन सदगुर सेवे सांत न आवई दूजी ना ही जाए जे बो तेरा लोचिए विण कर्मा पाया ना जाए अंतर लोभ विकार है दूजे पाए खुवाए तिन जम्मण मरण ना चुकई होमे विच दुख पाए जिनी सतगुर स्यों चित लाया सो खाली कोई ना है तिन जम की तलब ना हो वई ना ओए दुख सहा है नानक गुरमुख उबरे सच्चे शब्द समागे पौड़ी आप अलिप्त सदा रहे होर तंदे सब ताव है आप नेचल अचल है होर आव है जाव है सदा सदा घर त्याई है गुरमुख सुख पाव है निकरवासा पाई है सच सिफत समाव है सच्चा गैर गंभीर है गुर शब्द बुझाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई श्लोक महला तीजा सच्चा नाम त्याए तू खबो वरते सच नानक हुक्मे जो बुझे तो फल पाए सच कथनी बदनी करता फिरे हुक्म ना बूझे सच नानक हर का पाणा मन्ने तो भगत होए विण मन्ने कच्चन कच्च महला तीजा मन मुख बोल ना जाननी ओना अंदर काम क्रोध अहंकार ओए थाओ कथाओ ना जाननी उन अंतर लो विकार ओए अपने स्वाए आए भय गल्ला करे ओ ना मारे जम जिंदार अगे दरगे लेखे मंगे मार खुआर कीचे कूड़ियार ए कूड़े की मल क्यों उतरे कोई कड्डो यो विचार सतगुर मिले त नाम दड़ाए सब केलक कटन हार नाम जपे नाम आराध ते जन को करो सब नमस्कार मलकूड़ी नाम उतारियन जप नाम हुआ सचियार जन नानक जिस दे ए चलत है सो जीवो देवन हार पौड़ी तुद जेवड़ दाता नाग किस आग सुनाई है गुर प्रसादी पाए जिथो होमे जाइए रस का सादा बार सच्ची वड़े आईए जिसनु बख्शे तिस दे आप लए मिलाइए कट अंतर अमृत रखे ओन गुरम किसे पे आई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई श्लोक महला तीजा बाबाणियां कहानियां पुत सुपुत करेन जे सतगुर पावे सो मन लैन सेई कर्म करेन जाए पुछो सिमरत सास्त प्यास सुख नारद बचन सब सृट करेन सच्चे लाए सच लगे सदा सच समा लेन नानकाए से प्रवान पए ते सगले कुल तारेन महला तीजा गुरु जिना का अंगला सिख पी अंधे कर्म करेन ओए पाने चलन अपने निर झूठो चूड़ बोलेन कूड़ कुसत कुमान दे पर निंदा सदा करेन ओए आ डुबे पर निंदगा सगले कुल डोबेन नानक जित ओए लाए तित लगे ओए बपड़े क्या करेन पौड़ी सब नदरी अंदर रखद जेती सिट सब कीती एक कूड़ कुसत लायन मनमुख विभूति गुरमुख सदा त्याई है अंदर घर प्रीति जिन को पोते पुन है तिन वात से पीती नानक नाम त्याई है सच सिफत सुनाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਤੀ ਪਾਪ ਕਰ ਸਤ ਕਮਾਹੇ, ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਕਰ ਦੇਵਣ ਜਾਹੇ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਖੱਟੇ ਭਾਉ, ਭਾਵੇ ਆਵੋ ਭਾਵੇ ਜਾਓ। ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕੋਏ, ਆਪੋ ਆਪੇ ਪੂਜਾ ਹੋਏ। ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਕੈ ਭਏ ਨਿਆਏ, ਫੇਰੇ ਤਸਬੀ ਕਰੇ ਖੁਦਾਏ। ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਪੜ ਸੁਣਾਏ। ਤੁਰਕ ਮੰਤਰ ਕੰਨ ਰੇ ਸੁਮਾਹੇ, ਲੋਕ ਮੁਹਾਵੇ ਚਾੜੀ ਖਾਹੇ। ਚੌਂਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ, ਐਸਾ ਹਿੰਦੂ ਵੇਖੋ ਕੋਏ। ਜੋਗੀ ਗਿਰਹੀ ਜਡਾ ਬੇਪੂਤ, ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਰੋਵੇ ਪੂਤ। ਜੋਗ ਨ ਪਾਇਆ ਜੁੱਤ ਗਵਾਈ, ਕਿਤ ਕਾਰਨ ਸਿਰਸ਼ਾਈ ਪਾਈ। ਨਾਨਕ ਕਲਕਾ ਇਹੋ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਆਪੇ ਆਖਣੇ ਆਪੇ ਜਾਣ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਕਰ ਹਿੰਦੂ ਆਵੇ, ਸੂਜ ਨੇਊ ਪੜਗਲ ਪਾਵੇ। ਤੂਤ ਪਾਏ ਕਰੇ ਬੁਰਿਆਈ, ਨਾਤਾ ਤੋਤਾ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ। ਵਿਣ ਗੁਰ ਪੀਰੇ ਉਹ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ, ਰਾਉ ਦਸਾਏ ਉਥੇ ਕੋ ਜਾਏ। ਕਰਣੀ ਬਾਜੋਂ ਪਿਸਤ ਨ ਪਾਏ, ਜੋਗੀ ਕਹਿ ਘਰ ਜੁਗਤ ਦਸਾਈ। ਤਿਤ ਕਾਰਨ ਕਨ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਈ, ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਏ ਫਿਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਵਟਾਊ। ਕੀਰੀ ਆਈ ਟਿਲ ਨਾ ਕਾਊ, ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਸੋ ਜਾਏ ਸਿਆਣੇ। ਹੋਰ ਫੱਕੜ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਭਨਾ ਕਾਦਰ ਲੇਖਾ ਹੋਏ। ਕਰਣੀ ਬਾਜੋ ਤਰੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਖਾਣੇ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ, ਹਰ ਕਾ ਮੰਦਰ ਆਖੀਏ ਕਾਇਆ ਕੋੜ ਗੜ। ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਜਵੇਰੀ, ਗੁਰਮੁਖਰ ਨਾਮ ਪੜ। ਹਰ ਕਾ ਮੰਦਰ ਸਰੀਰ ਅਤ ਸੋਹਣਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿੜ। ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਖੁਆਇਨ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਨਿਤ ਕੜ। ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਪਾਇਆ ਜਾਈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾ ਸਦੁਖੀਆ ਨਾ ਸਸੁਖੀਆ, ਨਾ ਸਤ ਪਾਣੀ ਜੰਤ ਫਿਰੇ, ਨਾ ਸਤ ਮੂਡ ਮੁੰਡਾਈ ਕੇਸੀ। ਨਾ ਸਤ ਪੜਿਆ ਦੇਸ ਫਿਰੇ, ਨਾ ਸਤ ਰੁੱਖੀ ਬਿਰਖੀ ਪੱਥਰ। ਆਪ ਤਸ਼ਾਵ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸਹਿ, ਨਾ ਸਹਸਤੀ ਬੱਧੇ ਸੰਗਲ। ਨਾ ਸਤ ਗਾਈ ਕਾਉ ਚਰੇ, ਜਿਸ ਹਸਿੱਧ ਦੇਵੇ ਜੇ ਸੋਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਤ ਆਏ ਮਿਲੇ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੋ ਮਿਲੇ ਵਡਾਈ। ਜਿਸ ਕੜ ਪੀਤਰ ਸ਼ਬਦ ਰਵੇ, ਸਭ ਕੜ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਭਨਾ ਅੰਦਰ। ਜਿਸੇ ਖੁਆਈ ਤਿਸ ਕੌਣ ਕਹੇ, ਜਿਸੇ ਦਿਖਾਲਾ ਵਾਟੜੀ ਤਿਸੇ ਭੁਲਾਵੇ ਕੌਣ। ਜਿਸੇ ਭੁਲਾਈ ਪੰਧ ਸਿਰ, ਤਿਸੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕੌਣ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਜੋ ਨਿਗ੍ਰਹ ਕਰੇ, ਜਬ ਤਬ ਸੰਜਮ ਪੀਖਿਆ ਕਰੇ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੇ ਸਰੀਰ, ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਗੰਗਾ ਕਾ ਨੀਰ। ਬੋਲੇ ਈਸ਼ਰ ਸਤ ਸਰੂਪ, ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਰੇਖਣਾ ਰੂਪ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।

मूर्ख का कहना मूर्ख के क्या लक्षण है, क्या मूर्ख का करना मूर्ख हो जे मुग्ध है, अहंकारे मरना एत कमाने सदा दुख, दुख ही मैं रहना, अत प्यारा पवे खूह क्यो संजम करना, गुरमुख होए सो करे विचार, ओस अलिप्तो रहना, हर नाम जपे आप उधरे, ओस पिछे डुबदे पी तरना, नानक जोत पावे सो करे, जो दे सो सहना, महला पहला नानक आखे रे मना, सुनिए सिख सही, लेखा रब मंगेसिया, बैठा काड वही, तलबा पोसन आकिया, बाकी जिना रही, अजराइल फरेश्ता, होसी आए तई, आमन जान न सुजई, पीड़ी गली पई, ऊड़न कुट्टे नानका, ओड़क सच रही पौड़ी, हर का सब शरीर है, हर रब रहे सब आपे, हर की कीमत ना पवे, किस कहन ना जापे, गुर प्रसाद दी साराई है, हर पगती रापे, सब मन पनघरिया होया, अहंकार गवापे, सब किस हर का खेल है, गुरमुख से बुझाई, वाहो वाहो सच्चे पात सह, तू सच्ची नाई, श्लोक महला पहला, सहंसर दान दे इंदर रो आया, परसराम रोवे कर आया, अजाय सुरोवे पीख्या खाए, ऐसी दरगह मिले सजाए, रोवे रामन काला पया, सीता लखमण विछड़ गया, रोवे देसर लंक गवाए, जे सीता आंधी डौरू वाए, रोवे पांडव पय मजूर, जिनके स्वामी रहत हदूर, रोवे जनमेजा खोए गया, एक ही कारण पापी पया, रोवे शेख मसायक पीर, अंतकाल मत लागे पीड़, रोवे राजे कन्न पड़ाए, कर कर मांगे पीख्या जाए, रोवे किरपन संचे तन जाए, पंडित रोवे ज्ञान गवाए, बाली रोवे नाहे पतार, नानक दुखिया सब संसार, मन्ने नाओ तो ही जिन जाए, औरी कर्मना लेखे लाए महला दूजा, जब ताप सब कुछ मन्ने है, अवर कारा सा बाद, नानक मन्या मन्निये, बुझगे गुर प्रसाद पौड़ी, काया हंस तुरमेल करते लिख पाया, थामे गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया, गुण गावे गुण उच्चरे गुण माये सुमाया, सच्ची बाणी सच है सच मेल मिलाया, सब किस आपे आप है आपे दे वड़ियाई, वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई, श्लोक महला दूजा, नानक अंधा होए कै रत्ना परखण जाए, रत्ना सार ना जानई, आवे आप लखाए महला दूजा, रत्ना केरी गुसली रत्नी खोली आए, वखर तै बन जा रहा दोहां रही सुमाए, जिन गुण पल्ले नानका माणक बन जैसे, रत्ना सार ना जानई, अंधे वत्ते लोए पौड़ी, नौ दरवाजे कया कोट है, जिसमें गुप्त रखीजे वज्र कपाट ना खुलनी, पुर शब्द खोली जे अनखद वाजे तुन वज दे, पुर शब्द सुनी जे तेदकड़ अंतर चानना, कर भगत मिली जे तम एक वर्तदा, जिन आपे रचन रचाई, वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई, श्लोक महला दूजा, अंधे कह राय दस्य है, अंधा होए सो जाए, होए सो जाखा नानका तो क्यों उजड़ पाए, अंधे ए ना आखियन जेन मुख लोइन नाहे, अंधे से ही नानका खसमो कुत्ते जाए, महला दूजा, साहिब अंधा जो किया करे सो जाखा होए, जेहा जाने ते हो वर्ते, जे सो आखे कोए, जिते सो वस्त न जापई।

सुंदर बचन तुम सुनो शबीली, पिरतेड़ा मन साधारण, दुर्जन से तीन हो रचायो, दस विखा मैं कारण, ऊनी नाही चूनी नाही, नाही किसे विहूनी, फिर शैश पीला छड गवायो, दुर्मल कर्म विहूनी, ना हो फुली ना हो चुकी, ना मैं नाही दूसा, जितहो लाई तितहो लगी, तू सुन सच संदेशा, साई सुहागण साई भागण, जय फिर कृपा तारी, फिर अवगुण के सब गवाए, गल से ती लाए सवारी, कर्महीन तन करे बेनंती, कद नानक आवे वारी, सब सुहागण माणे रलियां, एक देव रात मुरारी, महला पंजवां, ताहि मन तू डोलता, हर मनसा पूर्ण हार, सतगुर पुरख ते आए तू, सब दुख वसारण हार, हर नामा आराध मन, सब किल विख जाए विकार, जिन को पूर्व लिखिया

मित्र सब काज सवारिया, जे तू आवे चित तो प्रवान जान, जे तू आवे चित बहुता ते स्थान, जे तू आवे चित तो वड परवारिया, जे तू आवे चित तिन कुर उधारिया। श्लोक महला पंजवा। अंदरों अन्ना बारों अन्ना, कूड़ी कूड़ी गावे, देही तोवे चक्र बनाए, माया नू बहुतावे। अंदर मैल ना उतरे हों में, फिर आवे जावे, नींद व्यापिया।

आवे। सिख हंस सरवर इकट्ठे होए, सतगुर कै हुकम आवे। रदन पदार्थ माणक सरवर पर पूरे, खाए खर्चरे तोट न आवे। सरवर हंस दूर न होई, करते ए वे पावे। जन नानक जिसदे मस्तक भाग तुर लिखिया, सो सिख गुरु पै आवे। आ करिया कुटम सब तारे, सबा सिरट छिडावे। महला पंजवां, पंडित आखाए बहुती राही। कोर

आओ, मन तन हिरदे सिमर हर, आड़ पैर गुण गाओ, उपदेश सुनो तुम गुर सिखो, सच्चा ए सुआओ, जन पदार्थ सबर होए, मन में लायो पाओ, सूग सहज आनंद कणा, प्रभ जपत्या दुख जाए, नानक नाम जपत सुख उपजे।

तिस दर्द निवारणो, जितो मुठा चित तिस कदे ना हारणो, जिस मिलिया पूरा गुरु सो सर प्रतारणो, जिसनु लाए सच तिस सच संभालणो, जिस आया हथ निधान तो रहा पालणो, जिसनु इको रंग भगत सो जानणो, ओ सबना की रेण बिरही चारणो, सब तेरे चोज विड़ान सब तेरा कारणो। श्लोक महला पंजवा। उस पे निंदा नानक जी मैं हब मजाई, छोड़िया हब किस त्यागी,

मुद्रा मदक सहतुन लागी सुगमन पोचन हारी रे तीर्थ बरत नेम सुसंजम रस गहने देओ रे तुरत प्याल सुधारस अमृत यो महारस पेओ रे निजर तार चोवे तन निर्मल ए रस मनुआ रातो रे कह कबीर सगले मद छूछे एह महारस सचो रे गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ पौ पाठी मन तारा सुख मन नारी सहज समानी पीवे पीवन हारा हौदू मेरा मन मतवारा उनमा चिड़ा मद रस चाकया तेर पवन पया उजियारा अरहाओ द्विपर जोर साई पाठी पियो महारस पारी ताम क्रोध किए जलेता छूट गई संसारी प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गमत सदगुर ते सुध पाई दास कबीर तास बंद माता उचकना कब हूं जाई तू मेरो मेर परबत स्वामी ओढ़ गही मैं तेरी।

जब तब संजम गुरमुख भोगी रहाओ। बुद्ध बिपूत चढ़ावो अपनी, सिंगी सुरत मिलाई, कर बैराग फिरो तन नगरी।

गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन पर जियो पिंड था दिया इसकी पाओ भक्त नहीं साधी रहाओ पर तन पर तन पर ती निंदा पर अपवाद ना छूटे आवा गवन होत है फुन फुन यो प्रसंग न टूटे जे कर कथा होत हर संतन एक निमखना की नो मैं फेरा लंपड़ चोर दूत मतवारे तीन संग सदा बसेरा काम क्रोध माया मद मस्तर ए संपे मो माही दया धर्म अर गुर की सेवा ए सुपनं तरनाही दीन दयाल के पाल दमुदर भगत बछल पैहारी कहत कबीर पीर जन रखो हर सेवा करो तुम्हारी जे सिमरन होए मुक्त द्वार जाए बैकुंठ नहीं संसार निरपो के कर बजावे तूर अनगत बजे सदा भरपूर ऐसा सिमरन कर मन माहे बिन सिमरन मुक्त कद नाहे रघाव जे सिमरन नाही ननकार मुक्त करे उतरे।

गगन मझारंग वेदियले चक्कर पुहंगा पेटियले राय निसंगा टूकियले मोह मयास सदकीनो सूर गेरासा जाब कुंभक पर

रखी अले मन राम नामा बेदी अले जैसे कनक कला चित मांडी अले रघाव आनी ले कुंभ पराई ले उदक राजकुमार पुरंदरिये हस्त विनोद विचार करती है।

अगम अपार परम पुरख की घाटी ऊपर हाट हाड़ पर आला आले पीतर दाती जागत रहे सो कहू ना सोवे तीन तिलोक समाध पलोवे बीज मंत्र ले हिरदे रहे मनुआ उल्ट सुन मैं गह जागत रहे ना अलिया पाख है पांचों इंद्री।

प्रसामी तुम धुट तारे हरण के नट मोहल्ला चौथा मेरे मान जप हर हर राम रंगे हर हर कृपा करी जगदीशर हर त्यायो।

उमरे गुण प्रव कह न सके हम तुम वड वड पुरख वडगे जन नानको दया प्रवतारो हम सेवो तुम जन पगे नट मोहल्ला चौथा मेरे मान जप हर हर नाम मने जगन्नाथ कृपा प्रतारी मत गुरमत नाम बने रघाओ हर जन हर जस हर हर गायो उपदेश गुरु गुर सुने केल भग पाप नाम हर काटे जिव खेत किसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रव जानो हम कह न सके हर गुने जैसे

तुम ही गुण जानो प्रभ अपने माया फास बंद बो बंदे हर जप्यो खुल खुलने ज्यो जल कुंचर तंदुए बंदेओ हर चेत्यो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो जुग जुग ने तुमरी था पाई नहीं पावे जन नानक के प्रवड ने नट महला चौथा मेरे मन कल कीर्त हर प्रवणे हर हर दयाल दया प्रतारी लग सतगुर हर जपने रगाओ हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी सब त्यावे हर उड़ने जिनको तुमरे वड कटाख है ते गुरमुख हर सिमरने ए प्रपंच किया प्रस्वामी साब जग जीवन जुगने जो सलल है सरल उठे बहुलहरी मिल सलल है सलल समणे जो प्र किया सो तुम ही जान हो हम न जानी घर गहने हम बार्क कहो विपुस्त तारो हम करे प्रभु सिमरने तुम जलनिध हर मान सरोवर।

रखाओ। आज्ञा मान जान सुख पाय, सुन सुन नाम तुहारो जियो। ईगा ऊहा हर तुमगी यो गुरते मंत्र दृढ़ियो। जब ते जान पाई ए बाता, ताब कुशल खेम सब तीयो। साध संग नानक परगासियो।

हर हर हर मन त्याब हो, मैं हर हर नाम प्यारे, दीन दयाल पए प्रभु ठाकुर, पुर कह शब्द सवारे, मद सूदन जग जीवन माधो, मेरे ठाकुर अगम अपारे, एक बिनो बेनती करो गुर आगे।

सुनावे जो बोले सो ना बिचारे। सत संगत मिले ता दृढ़ता आवे हर राम नाम निस्तारे। जब लग जियो पिंड है साबत तब लग किशना संहारे। जब कर मंदर आग लगानी कर कूप कडे पनगारे। सागत सिउ मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम बिसारे। सागत बचन विश्वा जो डसिए तज सागत परे परारे। लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाई लग साधु संग सवारे। गुर के बचन सत सत कर माने मेरे ठाकुर बहुत प्यारे। पूर्व जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे। गुर प्रसाद।

देवो कटकाट हर साजन मिलियो गुरपुर गुर बचन बिकानो हट हाट मकर प्राग दान बो किया शरीर दियो अधकाट बिन हर नाम को मुक्त न पावे बो कंचन दीजे कटकाट हर कीर्त गुरमत जस गायो मन उगरे कपट कपाट त्रिवटी फोर परम पौ पागा लय पानी मटकी माट कल युग गुरपुरा तिन पाया जिन तुर मस्तक लिखे लिलाट जन नानक रस अमृत पिया

रे मन टहल हर सुखसार, अवर टहलां झूठियां निर करे जम सिर मार। रखाओ जिन्ना मस्तक लिखिया ते मिले संगार, संसार पौ जल तारिया हर संत पुरख अपार। नित चरण सेवो साध के तज लोभ मोह बेकार, सब तजो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार। एक परम फूले सागता बिन गुर अंध अंधार, तुर हो ना सो होया को ना मेटन हार। अगम रूप गोविंद का अनक नाम अपार, तन तन ते जन नानका जिन हर नामा उरतार। माली गौड़ा महला पंजवा राम नाम को नमस्कार, जास जबत होवत उधार। रहाओ जाके सिमरन मिटे तंद, जाके सिमरन छूटे बंद, जाके सिमरन मूर्ख चतर, जाके सिमरन कुले उधर, जाके सिमरन पौ दुख हरे, जाके सिमरन अबदा टरे, जाके सिमरन मुजद पाप, जाके सिमरन नहीं संताप, जाके सिमरन हृदय विगास, जाके सिमरन कवला दास, जाके सिमरन निध निदान, जाके सिमरन तरे निदान। पतत पावन नाम हरी, ओड भगत उधार करी, हर दास दासा दीन शरण, नानक माथा संत चरण। माली गौड़ा मोहल्ला पंजवा ऐसो सहाई हर को नाम, साध संगत परिपूर्ण काम। रखाओ बूढ़ को जैसे बेड़ी मिलत, बूझत दीवक मिलत तिलत, जलत अग्नि मिलत नीर।

प्रसाद हर समर्थ की सरना जीव पिंड तनरास मेरी प्रभ एक कारण करना रहाओ सिमर सिमर सदा सुख पाइये जीवने का मूल रब रया सरबत ठाई सुख मो अस्तूल आल जाल विकार ता सब हर गुणा नित गाओ गजोड़ नानक दान मांगे देव अपना नाओ माली गौड़ा महला पंजवां प्रभ समर्थ देव अपार कौन जाने चलत तेरे किस

मेरो बाप माधो तू तन केसो सामलियो बीठ लाए रखाओ कर तरे चक्कर बैकुण ते आए गृहस्थी के प्राण उधारी अले दो शासन की सभा द्रौपदी अंबर लेत उबारी अले गोतमनार हल्या तारी पावन केतक तारी अले ऐसा अधम अजात नाम देव ताओ शरणागत आई अले सबे कट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे रघाओ एकल माटी कुंचर चीटी भाजन गए भो नाना रे अस्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना रे एकल चिंता राख अनंता और तजो सवया सारे परमे नामा पहने कामा को ठाकुर को दसारे राग मारू महला पहला कर पहला चौप दे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह पंग गुर प्रसाद श्लोक साजन तेरे चरण की होए रहा सतूर नानक शरण तुहारिया।

ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान इसे नानी, हर गुण पूजे पाती, एको नाम एको नारायण ते पवन एका ज्योति, जे वा डंडी यो कड़ शाबा, तुलो नाम अजाती, एको हाट साउ सबना सिर, वणजारे एक पाती, दोवे सिरे सतगुरु नबेड़े, सो बूझे जिस एक लिव लागी, जियो रहे ने प्राती, शब्द विसाए परम चुकाए, सदा सेक दिन राती, ऊपर गगन गगन पर गोरख, ताका अगम गुरु पुनवासी, गुर बचनी बार कर एको नानक पया उदासी, राग मारू महला पहला, कर पंजवा एक ओंकार, सदगुर प्रसाद अहिंस जागे नींद न सोवे, सो जाने जिस वेदन होवे, प्रेम के कान लगे तन पीतर, वैद के जाने कारी जियो, जिसनु साचा सिवती लाए, गुरमुख विरले किसे बुझाए, अमृत की सार सोई जाने, जे अमृत का वापारी जियो रघाव, फिर से ती तन प्रेम हरचाए, गुर के शब्द तथा चित लाए, सहसे ती तन खरी सोहेली, कृष्णा तिखा निवारी जियो, सहसा तोड़े परम चुकाए, सहजे सिवती तनक चढ़ाए, गुर के शब्द मरे मन मारे, सुंदर जोगा तारी जियो, होमे जलिया मनो विसारे, जंपुर वज्जे खड़ग करारे, आपके कहे नाम ना मिलई, तू सो जीड़े पारी जियो, माया ममता पवे ख्याली, जंपुर फासेगा जम जाली, हेद के बंधन तोड़ना सांक है, ता जम करे खुवारी जियो, ना हों करता ना मैं किया, अमृत नाम सदगुरु दिया, जिस तू दे

सब नगरी में एको राजा सबे पवित्र रह थावा बाबा देव सा सच गावा जाते सहजे सहज समावा रहाओ बुरा पला किस आपस ते जाने ए सगल विकारा यो फरमाया खजम का हुआ वरत यो संसारा इंद्री तात सबल कहित है इंद्री किसते हुई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई गुर प्रसादी एक लेवलागी दुबदा तदे बेनासी दुत्स पाना सो सतकर मानिया काटी जमकी फासी पंत नानक लेखा मांगे कवना या चूके मान अवमाना।

एक सच्चा सब सेवदी तुर पाग मिलावा होए। गुरमुख मेरे से ना विछड़े पावे सच सोए। एक भगती सार ना जाननी मनमुख परम भुलाए। ओ ना मितिया पवरतदा करना किशु ना जाए। जिस नाल जोर ना चलई खले कीचे अरदास। नानक गुरमुख नाम मन वसे ता सुन करे साबास। मारू महला तीजा मारू ते सीतल करे मनूरहो कंचन होए। सो सच्चा सालाइए तिस जीवड़ अवर न कोए। मेरे मन अन दिन त्याए हर नाओ सतगुर के भजन आराध तू अन दिन गुण गाओ रखाओ। गुरमुख एको जानिए जिन सतगुर दे बुझाए। सो सतगुर सालाइए जिदू ए सोजी पाए। सतगुर छोड़ दूजे लगे क्या करन अगे जाए। जा पुर बदे मारिए बहुती मिले सजाए। मेरा प्रभ वे प्रवाहो है ना तिस तिल ना तमाए। नानक ते शरणाई पज पौ आपे बख्श मिलाए। मारू महला चौथा कार दूजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद। जप्यो नाम सुख जनक गुर बचनी हर घर शरण परे। दालद पंच सुदा में मिलियो भगती पाए तरे। भगत वछर हर नाम किरतार्थ गुरम कृपा करे। मेरे मन नाम जब उधरे रूप प्रहलाद बिदरदासी सुत। गुरमुख नाम तरे रघाओ कलयुग नाम प्रधान पदार्थ। भगत जना उधरे नामा जय दियो कबीर त्रिलोचन सब दुख गए चमरे। गुरमुख नाम लगे से उधरे सब किलबुख पाप टरे। जो जो नाम जपे अपराधी सब तिनके दोख पर हरे। बेसवा रब्त अजामल उधरेओ मुख बोले नारायण नर हरे। नाम जब उग्र सैन गद पाई तोड़ बंधन मुक्त करे। जन को आप अनुग्रह किया हर अंगीकार करे। सेवक पैज रखे मेरा गोविंद शरण परे उधरे। जन नानक हर कृपा तारी उर तरे ओ नाम हरे। मारू महला चौथा सिद्ध समाध जप्यो लिवलाई साधक मुन जपया। जति सती संतोखी ताया मुख इंदराध करव्या। शरण परे जप्यो ते पाए गुरमुख पार पया। मेरे मन नाम जपत तरिया तन्ना जट बाल्मीक बटवारा

प्रसाद हर घर भगत परे पंडारा गुरमुख राम करे निस्तारा जिसनु कृपा करे मेरा स्वामी सो हर के गुण गावे जियो हर घर कृपा करे बनवाली हर हृदय सदा सदा सुमाली हर घर नाम जपो मेरे जीवड़े जप हर घर नाम छिड़ावे जियो रखाओ सुख सागर अमृत घर नाओ मंगत जन जाचे घर देओ पसाओ हर सत सत सदा घर सत हर सत मेरे मन पावे जियो नवे शिदर सर्वे अपवित्रा बोल हर नाम पवित्र सब किता जे हर सो प्रसन्न होवे मेरा स्वामी हर सिमरत मल ले जावे जियो माया मोह बिखम है पारी क्यों तरगे दुत्तर संसारी सतगुर बोध दे प्रस

आयो साम नानक ओढ़ हर की लीजे पुजा पसारे। मारू महला पंजवां वित नवित प्रमयो बो पाती अनक जतन करताए।

असाध रोग उपजो तन पीतर तरत न काहू टारियो प्रा बिसत महा दुख पायो यो नानक तत विचारियो मारू महला पंजवा चरण कम प्रवरा खे चीत हर गुण गावे नीता नीत इस बिन दूजा अवर न को आद मद अंत है सो संतन की ओट आपे आप रहाओ जाके वस है सगल संसार आपे आप आप निरंकार नानक गए सब।

अज्ञानथ होशा मचा होए तुम बावर दुलभ जन्म अकारथ रे नर ऐसी करे एयानथ सारंग परंतु पूला मुझ लपट्यो दासी संस्थानत रहाओ तरणी तरत्याग नीज कुल सेव है हो करत बिहावत होट कर्म करे अज्ञानी मन अंध कहावत सत होता असत कर्मान्या जो बिनसत सो निचिर जान पर की को अपनी कर पकड़ी ऐसे पूल पुराणथ खत्री ब्राह्मण सूद वैस तब एक नाम तरानथ गुरु नानक उपदेश कहत है जो सुने सुपार परानत मारू महला पंजवा गुप्त करता संग सो प्राप्त डह काबे मनो खाए विसार हर जू बिखे भुग तप्त थम गल लाए रे नर काए पर घरे जाए कुदर कठोर काम गर्दभ तुमने सुनियो तरम राए रखाओ विकार पाथर गले बंद निंद पोड़ सराए मां सागर समुद लंघना पार ना पर ना जाए काम क्रोध लो मुहे व्याप्यो नेत्र रखे फिराए शीश उठावन ना कभू मिलई मां दुत्तरमाए तूर मुक्ता शशि मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अल्पाए सुभागत जैसे बसंतर अलिप्त सदा निर्मलाए।

हरख सोग लोभ मोह रहत है, निर्मल हर के संता, तिनकी तूड़ पाए मन मेरा, या दया करे भगवंता। कहो नानक गुर पूरा मिलया, ता उतरी मन की चिंता, मेरा अंतर जामी हर राया, सब जाने मेरे जी का प्रीतम, बिसर गए बक बाया, रहाओ दूजा। मारू महला पंजवां, कोट लाख सर...

माया माध मन तन संग जाता तृष्णना बूझे करत कलोला ऊनी आस मिथ्या सा बोला आवत अकेला जात अकेला हम तुम संग झूठे सा बोला पाए ठगौरी आप भुलायो नानक कीर्तन जाए मिटायो पस पंखी भूत अर प्रेता बहुबत जोनी फिरत अनेता जय जानू तै रहन न पावे थान बिहून उठ उठ फिर तावे मन तन वासना बहुत विस्तारा अहं मेव मूठो बेचारा अनक दोह अर बहुत सजाई ताकि कीमत कहन न जाई।

दीनानाथ जगत पित माया प्रभ दयाल दुख दर्द बिदारण जिस पावे तिस घी निस्तारण अंध कूब ते काढ़न हारा प्रेम भगत होवत निस्तारा साध रूप अपना तन धारिया महा अगन ते आप उबारिया जब तब संजम इस ते किश नाही आद अंत प्रभ अगम अगाही।

आवर सब कुछ मिथ्या रसना, आराम राम वखान, मेरे मन करन सुन हर नाम, मिटे अगत तेरे जन्म जन्म के, तमन बपरो जाम रहाओ, दुख दीन ना पौ ब्यापे, मिले सुख विश्राम, गुर प्रसाद नानक बखाने, हर भजन तत ज्ञान, मारू महला पंजवा, जिन्नी नाम सारिया, से होत देखे खेहे, पुत्र मित्र बिलास बनता, तूड़ते ए नेहे, मेरे मान नाम नित नित लेहे, जल तनाही अग्न सागर, दुख मन तन देहे रहाओ, बिरख छाया जैसे बिनसत, पवन चूलत मेहे, हर भगत दृढ़ मिल साध नानक, तेरे काम आवत एहे, मारू महला पंजवा, पुरख पूर्ण सुखे दाता।

साध संगत गुण उच्चारण हर नाम अमृत पास करो कृपा मुराद माधु सुन नानक जी वै गास मारू अंजलि महला पंजवां कार सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद संयोग वियोग तुरों हुई हुआ पंच तात कर पुतला किया साहे कै फुरमाएड़े जी देही विच जीव आए पया जिथे अगन पगे पड़हारे ऊर्द मुख महा गोबारे सास सास समाले सोई उथे खसम छड़ाए लाया विचों गर्भे निकल आया खसम सार दुनी चित लाया आवे जाए पुआईए जूनी रहन न कित ही थाए पया।

माया कीमत जन्म सरायो, आराम पजन नहीं लागे हो रहाओ। जम को डांड परे सिरी ऊपर, तब सोवत तय जागे हो, ता होत आपके पछताए, झूट तो नाहन पागे हो। ए चिंता उपजी घट मैं, जब गुर चरणन अनरागे हो, सोफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभु जस मैं पागे हो। मारू अष्टपदियां, महला पहला, कार पहला, एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, वेद पुराण कथे सुने, हारे मुनि अनेका, अड़सठ तीर्थ बौ कणा, प्रम था के पेखा, साचो साहिब निर्मलो।

गुरमती नाम उदारा, गुर पूरे पूरी मत है, पूरे शब्द बिचारा, अड़सठ तीर्थ हर नाम है, किलब काटन हारा, जल बलोवे जल मसे, तत लोड़े अंध अज्ञाना, गुरमती तद मसीए, अमृत पाएगे नाम नदाना, मानव तत ना जाननी, पशु माहे समाना, होमे मेरा मरी मार, मर जम्मे वारो वार, गुर के शब्दे जे मरे, फिर मरे न दूजी वार, गुरमती जग जी मनमान वसे, सब कोल उदाहरण हार, सच्चा वखर नाम है, सच्चा वापारा, लहा नाम संसार है, गुरमती विचारा, दूजे पाए कार कमावनी, नित टोटा सह सारा, साची संगत थान सच, सच्चे कर बारा, सच्चा भोजन पाओ सच, सच नाम अधारा, सच्ची बाणी संतोखिया, सच्चा शब्द विचारा, रस भोगण पात साहिया, दो सौ संघारा, मोटा ना उतराई है, गल औगुण भारा, मानस दात ना हो गई, तू दाता सारा, आगम अगोचर तू तनी, अवगत अपारा, गुर शब्दी दर जोई है, मुक्ते पंडारा, नानक मेल ना चुकई, साचे वापारा, मारू महला पहला, बेख बोहता लादया, दिया समुंद मजार, कंधी दिस ना आवई, ना उरवार ना पार, वंजी हाथ ना खेवटू, जल सागर असरार।

बिना को कश नहीं, गुर पूरे पूरी मदकीन रहाओ। अवगुण सुबर गुण नहीं, बिन गुण क्यों कर जाओ। सहज सब सुख उपजे, बिन भागा तन नाहे। जिनके नाम ना मन बसे, से बादे दुख सहाहे। जिन्नी नाम सारिया, ते किताए संसार। आगे पासे सुख नहीं, गाडे लादे शार। विछड़िया मेला नहीं, तू कणु जमद्वार। अगे क्या जाना नाहे, मैं भूले तू समझाए। भूले मार्ग जो दसे, तिसके लागो पाए। गुरबिन दाता को नहीं, कीमत कहण न जाए। साजन देखा ता गल मिला, साच पठायो लेख। मुख तिमाणे तन खड़ी, गुरमुख आखी देख। तुद पावे तू मन वसे, नदरी कर्म वसेख। भूख पिया सो जे पवे,

गुरपूरे सा वास है, काटे मन पीरा लाला गोला तनी को क्या कहो बड़े आई है, भाणे बक्से पूरा तनी सच कार कमाइए, विछड़िया को मेल लए गुर को बर जाइए, लाले गोले मत खरी गुर की मत निकी, ताती सुरत सुहावनी मानमुख मत फीकी, मन तन तेरा तू प्रभु सज तीरक तुरकी, सचे बैसन उठना सच भोजन भाखिया, चित सचे वितो सचा साचा रहचाखिया, साचे घर साचे रखे गुर बचन सुपाखिया, मनमुख को आलस घणो फाथे उजाड़ी, पाथा चुगे न चोगड़ी लाग बंद बिगाड़ी, गुर प्रसादी मुक्त होए साचे ने ताड़ी, अनहत लाला बिदया प्रभगेत प्यारी, बिन साचे जियो जल बलो झूठे वेकारी, पाद कारा सब छोड़िया साची तरतारी, जिन्नी नाम सारिया

लगाओ। हे गुण मिस्र गए अपराधी, मैं बौरा क्या करो हरे। तू दाता दयाल सबे सेर, आहे निस दात सुमार करे। चार पदार्थ लय जग जन्मया, शिव शक्ति कर वास तरे। लागी भूख माया मुग जोग, मुग्ध पदार्थ मोए खरे। कारण पलाव करे नहीं पावे, एत उद ढूंढत थाग परे। काम क्रोध अंकार वे आपे, कूड़ कुटां से प्रीत करे। खावे पूगे सुन सुन दिख, पैर दिखावे काल करे। बिन गुरु शब्द न या पछाण, बिन हर नाम ना काल टरे। जेता मोह में कर भूले, मेरी मेरी करते शीन करे। तान तन बिन सहसे सहसा, फिर पछतावे मुख तूर परे। बिरद पया जोबन तन खिसिया, काप कंठ बरुद्ध हो नैनो नीर टरे। चरण रहे कर कंपन लागे, साग त्राम न हृदय हरे। तुरत गई काली हूं तौले, इसे ना पावे रखियो करे। विसरत नाम ऐसे दुख लाग गए, जाम मार सुमारे नरक खरे। पूर्व जन्म को लेख न मिटई, जन्म मरे का को दोष तरे। बिन गुर बाद जीवन हो मरना, बिन गुर शब्दे जन्म जरे। खुशी खुआर पै रस भोगण, भोगट कर्म विकार करे। नाम विसार लोभ मूर्ख होयो, सिर थर मराए का दंड परे। गुरमुख राम नाम गुण गावे, जा को हर पर नदर करे। ते निर्मल पुरख अपरंपर पूरे, ते जग में गुर गोविंद हरे। हर सिमरहो गुर भजन सुमारहो, संगत हर जन पाओ करे। हर जन गुर प्रधान द्वारे, नानक तीन जन की रेन हरे। एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

तले उगाए बैसे हो, शरम ना रहे हो शरीर, मां सागर में व्यापे किने उतरे हो तीर, चंदन अगर कपूर लेपन

कंचन काया गुरमुख बूझे जिस अंतर नाम निवासी है। सच्चा चौका सुरत की कारा हर नाम पूजन सच आधारा। सदा त्रिवत पवित्र है पावन जित कड़ हर नाम निवासी है। हों तिन बलिहारी जो साचे लागे हर गुण गावे अनदिन जागे। साचा सुख सदा तिन अंतर रसना हर रस रासी है। हर नाम चेता अवर न पूजा एको सेवी अवर न दूजा। पूरे गोर सब सच दिखाया सच्चे नाम निवासी है। प्रम प्रोजोनी फिर आया आ भूला जा खसम भुलाया। हर जू मिले ता गुरमुख बूझे तीने शब्द अविनाशी है। काम क्रोध परे हम अपराधी क्या मोल है बोल है। नाम गुणना सेवा साधी डुबदे पाथर मेल रहे हो तुम। आपे सात नाम अविनाशी है। ना कोई करे न करने जोगा आपे करे करावे सो होएगा। आपे बख्श लए सुख पाए सदगी नाम निवासी है। यो तन धरती शब्द बीज अपारा हर साचे सेती वणज वापारा। सैतन जम्या तोट न आवे अंतर नाम निवासी है। हर जीव अवगुण आरे नू गुण कीजे आपे बख्श लए नाम दीजे। गुरमुख होवे सो पद पाए एकत नाम निवासी है। अंतर हर तान समझ न होई गुर प्रसादी बूझे कोई। गुरमुख होवे सो तन पाए सदगी नाम निवासी है। अन लवाओ परम पुलाई माया मोहे सुध न काई। मानवक अंधे किशु न सूझे गुरमत नाम परगासी है। मानवक होमे माया सूते अपना करना संभाले अंत विगूते। पर निंदा करे वो चिंता जाले दुखे दुख निवासी है। आपे करते कार कराई आपे गुरमुख दे बुझाई। नानक नाम रते मन निर्मल नामे नाम निवासी है। मारू महला तीजा एको सेवी सदा थिर साचा। दूजे लागा सब जा काचा गुरमती सदा सच साला ही। साचे ही साच पतीजे हे तेरे गुण बहुते मैं एक न जाता। आपे लाए लाए जग जीवन दाता आपे बक्से दे वडियाई। गुरमत यो मन पीजे हे माया लहर शब्द निवारी। यो मन निर्मल होमे मारी

सत्ते लाए सेजन लागे, अंतर शब्द मस्तक वड़ पागे, सच्चे शब्द सदा गुण गाव है, शब्दरते विचारी हे, सच्चो सच्चा सच सालाही, एको वेखा दूजा नाही, गुरमत उच्च उची पौड़ी, ज्ञान रतन हो में मारी हे, माया मोह शब्द जलाया, सच मनवस्या जात पाया, सच्चे की सब सच्ची करनी, हो में तिखा निवारी हे, माया मोह सब आपे कीना, गुरमुख विरले किन ही चीना, गुरमुख होवे सो सच कमावे, सची करनी सारी हे, कार कमाई जो मेरे प्रापाई, होमे तिशना शब्द बुझाई, गुरमत सदगी अंतर शीतल, होमे मारने वारी हे, सच लगे तिन सब कुछ पावे, सच्चे शब्दे सच सुहावे, ऐते साचे से दर साचे, नदरी नदर सवारी हे, बिन साचे जो दूजे लाया, माया मोह दुख सुबाया, बिन गुर दुख सुख जापे नाही, माया मोह दुख भारी हे, साचा सब जिन्ना मन पाया, पूर्व लिखिया तिनी कमाया, सचो सेव है सच त्याव है, सच रते विचारी हे, गुर की सेवा मीठी लागी, अनदिन सुख सह समाधि, हर करत्या मन निर्मल हुआ, गुर की सेव प्यारी हे, छे जन सुगे सदगुर सच्चे लाए, आपे पाने आ मिलाए, सदगुर राखे से जन उबरे, और माया मोह खुवारी हे, गुरमुख साचा शब्द पछाता, नाथ कुटुंब नाथ माता, एको एक रविया सब अंतर, सबना जिया का आधारी हे, होमे मेरा दूजा पाया, इचना चले तुर खसम लिख पाया, गुर साचे ते साच कमाव है, साचे दुख निवारी हे, जा तू देह सदा सुख पाए, साचे शब्दे साच कमाए, अंदर साचा मन तन साचा।

गुण में गुणी समाया, ए जग में मोह है पासारा, मानव अज्ञानी अंध अंधारा, तंदे तावत जन्म गवाया, बिन नावे दुख पाया, कर्म होवे ता सतगुर पाए, होमे मैल शब्द जलाए, मान निर्मल क्या रतन चानन, अज्ञान अंधेर गवाया, तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई, सच नाम

सोधर सेवे हो ना कोए, ऐसा सदगुर लोड़ लहो जे जेवड़ अवर ना कोए, ते शरणाई छूटिए लेखा मंगे ना कोए, सच दृढ़ाए सच दृढ़ सच्चा ओ शब्द दे, हृदय जिरदे सच है तन मन पी सच्चा होए, नानक सच्चे हो मन्ने है।

कर हीड़े हिक आधार तियो संतन की रेण जित लभी सुखदा तार पौड़ी बिन कर्मा हर जियो ना पाई है बिन सदगुर मनुमा ना लगे धर्म तीरा कल अंदर यो पापी मूल न तगे अहे कर करे सो अहे कर पाए एक कड़ी मोहत ना लगे चारे जुग में सोदया विण संगत अंकार ना पगे होमे मूल ना छुटई विण साधु सत्संग तिचर था ना पावई जिचर साहिब स्यो मन पंग जिन जान गुरमुख सेवया इस कर दी बाण अपगे हर कृपा ते सुख पाया गोर सतगुर चरणी लगे डखणे महला पंजवां लोड़िंदो हब जाए सो मीरा मीरन सिर अठ मंजाऊ सो तणी चौदो मुख अलाए महला पंजवां माणकू मोय माओ डिणना तणी अपाहे हियाओ मिंजा ठंडड़ा मुखों सच अलाए महला।

सुजान बिधाता चंचल जगत सुबाया ज्ञान ध्यान गुण अंक समाणे प्रापाणे ता पाया गीत नाद कवत कवे सुन राम नाम दुख पग नानक सा तन नहा प्यारी अब भगति पिर अग ओह तुखार पड़े वाण त्रैण रस सुख आपत की नाही मन तन वसै मुखे मन तन रब रहया जग जीवन गुर सबदी रंग माणी अंडज जेरज सेतज उदपुज कड़कड़ जोत समाणी दर्शन देहो दया।

सुर नर शब्द मिलाए तिन प्रकारण किया तुखारी मुहल्ला पहला तारा चढ़िया लम्मा क्यों नदर निहालिया राम सेव कसूर करम्मा सदगुर शब्द दिखा लिया राम गुर शब्द दिखा लिया सच समालिया अहे निस देख बिचारिया धावत पंच रहे कर जानिया काम क्रोध बिख मारिया अंतर जोत पई गुरसाखी तीने राम करम्मा नान कहो में मार पतीने तारा चढ़िया लम्मा गुरमुख जाग रहे चूकी अभमानी राम अन दिन भोर पया साच समानी राम साच समानी गुरमुख मन पानी गुरमुख साबत जागे

नित देवे चढ़े सुवाया, अपरंपरे आपे था पुथापे, इस पावे सो होवे, नानक हीरा हीरे विद्या, गुण कै हार परोवे, गुण गुणे समाने, मस्तक नाम निशानो, सा समाया चूका आमन जानो, सच साच पछ

अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी हौ सतगुर कै बलिहारिये। सतगुर आगे सीस पेट देओ जे सतगुर साचे पावे, आपे दया करो प्रदाते नानक अंक समावे। तुखारी महला चौथा हर हर अगम अगाध अपरम

गुरवाग सतगुर जो पाए चले, तिन हर हर आप मिलाया, ज्योति ज्योत मिल जो तस्वाणी, हर कृपा कर धरणी तरा, हर हर अगम अगाध, अपरंपर अपर परा, तुम स्वामी अगम अथाहा, तू कट कट पूर रहया, तू अलख अपेव अगम, गुर सतगुर बचन लहया, तन तन तेजन पुरख पूरे, जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे, बवेक बुद्ध विचार गुरमुख।

पंच दास तीन दुखी एक मन अनाथ नाथ राख हो कृपाल रखाओ अनक जतन गमन करो खड़ कर्म जुत ध्यान करो उपाव सगल कर हारियो नह उठे बिकराल शरण बंदन करना पते पाव हरण हर हर हर हरे एक तू ही दीन दयाल प्रभ चरण नानक आसरो उदरे प्रमो सागर लग संतना पगपाल केदारा मोहल्ला पंजवा कार चौथा एक ओ अंकार सतगुर

सदगुर प्रसाद बिसरत नाहे मन ते हरी आबे प्रीत महा प्रबल पई आन विखे जरी रघाओ बूंद का त्याग चातरक मीन रहत ना करी गुण गोपाल उच्चा रसना टेव ए परी महानाद कुरंक मोयो वेद तीखन सरी प्रचरण कमल रसाल नानक गांठ बांध थरी केदारा महला पनवा प्रीतम बस्त।

ठिया मटिया संग न कछ ले जाए रगाओ। देरी बैठी मेरी रोवे द्वारे लव संग माए, मा हट लग सब लोग कुटंब मेल हंस अकेला जाए। वय सुत वय बित वय पुरपाटन बौर न देखे आए, कहे त कबीर आराम की।

रूप रंग रेस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालो, पानी हर जप जन्म गयो, साच शब्द बेन कहो ना छूड़स, बिरता जन्म पयो रखाओ, तन में काम क्रोध को ममता, कठिन पीर अद फारी, गुरमुख राम जपो रस रसना, एन बेद तार तू तारी, बहरे करण अकल पई होची, साबद सहज नहीं बूझया, जन्म पदार्थ मन मुख हारिया, बिन गुर अंध न सूझया, रहे उदास आस निरासा, सहज ध्यान बैरागी, परमत नानक गुरमुख छूड़स, राम नाम लेव लागी, भैरो महला पहला, ढूंढी चाल चरण कर खिसरे, तुचा दे कुमलानी, नेत्री तुंद करण पै बैरे, मनमुख नाम न जानी।

गुरमुख राम नाम जब हिरदे सहसे ती कर जाइए रघाव, परम भेद पौ कभू न छूड़स आप जात न जानी, बिन हर नाम को मुक्त न पावस डूब मोए बिन पानी, धंधा करत सगली पद खोबस परम ना मिटस गुवारा, बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कभी अंधले तंद बसारा, अकोल निरंजन स्यो

होय। निकर वसे सहज सुभाय, गुरमुख नाम से मन आए, आपे वेखे वेखणहार, नानक नाम रखो उरतार। भैरो महला तीजा, कल युग में राम नाम उरतार, बिन नावे माते पावे शार, राम नाम दुलभ है पाई, गुर प्रसाद।

लय उबार खिन मय भयान रूप निक्षा थम उपाड़ अरणागस नहीं बिदारिया प्रहलाद लिया उबार संत जना के हर जियो कार्ज सवारे प्रहलाद जन के एक ही कुर उधारे गुर के शब्द होमे बिखमारे नानक राम नाम संत निस्तारे।

अरहो अराम रसायन नित उड़पी भो हार हार हार हार रसना कहो अरहाओ कल युग में एक नाम उधार नानक बोले ब्रह्म विचार पैरों महला पंजवा सदगुर सेव सर्व फल।

भगत हमारी सबनी लोई, पिता हमारे प्रगटे माझ, पिता पूत रल की नी सांझ, कहो नानक जो पिता पतीने, पिता पूत एक रंग लीने। भैरो मोहल्ला पंजवां, निर्वैर पुरख सतगुर प्रदाते, हम अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को मिले ना ढोई, शरण आवे ता निर्मल होई, सुख पाया सतगुरु मनाए।

मन प्रगट पया नाम लए पातन ते गया नाम लए सगल पुरबाया नाम लए अड़सठ मजनाया तीर्थ हमरा हर को नाम गुर उपदेशा तत् ज्ञान रघाओ नाम लए दुख दूर पराना नाम लए आत मूढ़ सो गया।

तू मान मूढ़ मुग्ध होए चतर सो ज्ञान सगल भयान का पौ नसे जन अपने कह हर मन बसे पार ब्रह्म प्रसूख निदान तत ज्ञान हर अमृत नाम हर कृपा संत टहले लाए नानक साधु संग समाए भैरो महला पंजवा संत मंडल में हर मन वसे संत मंडल में दुर्ध सब नसे संत मंडल में निर्मल रीत संत संग हो एक परीत संत मंडल तहा का नाओ पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहाओ संत मंडल में जन्म मरण रहे संत मंडल में जम किशु ना कहे संत संग हो निर्मल बाणी संत मंडल में नाम खाणी संत मंडल का निचल आसन संत मंडल में पाप विनाशन संत मंडल में निर्मल कथा संत संग हो में दुख नसा संत मंडल का नहीं विनाश संत मंडल में हर गुणतास संत मंडल ठाकुर बिसरा।

काल पर हरे सदा सखाई हर हर नाम। जे चीत आवे ते सदा सुख होवे, निकट न आवे ताके जाम रखाओ। जब प्यो न सो तब किने उपाया, कवन मूल ते क्या प्रगटाया। आपे मार आप जीवाले, अपने भगत को सदा।

नाटे सुख नाई बहु देश कमाए सर्व सुखा हर हर गुण गाए सुख सहज आनंद लहो सा संग पागे वडभागी गुरमुख हर हर नाम कहो रहाओ। बंधन माल पिता सुध बनता बंधन कर्म तरमो करता बंधन काटनहार मन वसै तौ सो पावे निज कर बसै सब जाजक प्रादे मनगार गुण निदान बेंत अपार जिसनु कर्म करे प्रव्यापना हर हर नाम तिने जन जपना गुर अपने आगे अरदास कर कृपा पुरख गुणतास कौ नानक तुमरी सरनाई ज्यों पावे त्यों रखो गुसाई। भैरो महला पंजवा गुरमुख त्यागो दूजा पाओ गुरमुख जप्यो हर का नाओ बिसरी चिंत नाम रंग लागा जन्म जन्म का सोया जागा कार कृपा अपनी सेवा लाए साधु संग सर्व सुख पाए हरहाओ। रोग दोख गुर शब्द निवारे नाम औखद मन पीतर सारे गुर पेड़त मन पया आनंद सर्वन दान नाम भगवंत जन्म मरण की मिटी जम त्रास साध संगत ऊंद कवन विगास गुण गावत निचल विश्राम पूर्ण होए सगले काम दुलभ दे आई परवान सफल होई जप हर हर नाम कहो नानक प्रभु कृपा करी सास ग्रास जपो हर हरी। भैरो महला पनवा तब ते ऊंचा जा का नाओ सदा सदा ताके गुण गाओ जे सिमरत सगला दुख जाए सर्व सुख बसे मन आए सिमर मना तू साचा सोए हलत पलत तुमरी गत होए रहाओ। पुरख निरंजन सिरजनहार जी जंत देवे आहार कोट खते खिन बख्शनहार भगत पाए सदा निस्तार साचा तन साची वड्याई पूरे गुरते निचल मद पाई।

राम नाम रिद्ध दियो निवास सदा आनंद नाही किज सोग दुख दर्द न व्यापे रोग सब के तेरा तू करने हार पार ब्रह्म अगु अपार निर्मल शोभा अचरज बाणी पार ब्रह्म पूर्ण मन पानी जल थर महील रविया सोए नानक सब प्रवते होए भैरो महला पंजवा मन ताराता राम रंग चरणे सर्व मनोरथ पूर्ण करने आठ पैर गावत भगवंत सब गुर दीनो पूरा मंत सोवड़ पागी जिस नाम प्यार तिसके संग तरे संसार रहाओ सोई ज्ञानी जे सिमरे एक तो तनवंता जिस बुद्ध विवेक तो कुलवंता जे सिमरे स्वामी सो पतवंता जे आप शानी गुर प्रसाद परम पद पाया गुण गोपाल निरैन ते आया टूटे बंधन पूर्ण आसा हर के चरण हृदमाय निवासा कहो नांग जाके पूर्ण कर्मा सो जन आया प्रभु की सरना आप वित पाम सब कीने राम रसायन रसना चीने।

निमकन छोड सदगी साथ हर सा प्रीतम अवर ना कोय सार समाले साचा सोए माल पिता सुत बंद नारायण आदि जुगाद भगत गुण गायन।

भगत करो जन सरन तुम्हारी, नाओ विर माया नाओ मेरे पूंजी, तुम्हें छोड़ जानो नहीं दूजी, नाओ मेरे बंधप नाओ मेरे पाई, नाओ मेरे संग अंत होए सगाई।

आए। ऐसा ज्ञान विचार मना हर की ना सिमरो दुख पंजना। अहाओ जब लग सिंह रहे बन माहे तब लग बन फूले ही नाहे। जब ही स्यार

कड़ पीतर यूं वढ़ लियो न जाई, प्रेम पलीता सुरत होवाई, गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अग्न सहजे पर जाली, एक चोट सिझाया, सात संतोख ले

अंत अर्ध उर्ध मुगला गोकास तुंड मंडल में कर परगास ऊगा सूरज नाही चंद आद निरंजन करे आनंद सो ब्रह्मंड पिंड सुजान मान सरोवर कर स्नान सो हं

विद्या कोट सबे गुण कहे, तउ पार ब्रह्म का अंत न लह, बावन कोट जाके रुमावली, रामन सयना जयते शली, सहस कोट।

तैसे ओए नरा परमत नाम दियो नाटे बिना ना सोहे बत्तीस लखना दूध कटोरे गडवे पानी कपल गाए नामे धुए आनी दूध पियो गोबिंदे राए दूध पियो मेरो मन पतियाए नहीं ता कर को बाप रसाए अरहाओ सोयन कटोरी अमृत परी लै नामे घर आगे तरी एक भगत मेरे हृदय बसे नामे देख नारायण हस्ते दूध पियाए भगत कर गया नामे घर का

औरेठानी दुट सवा मेल मंत्र उपाया करसे औध कनेरी गिरतार जाल ज्वाला पै राख्यो राजा राम माया फेरी काड खड़ग काल पै कोप्यो मोए बताओ जो तुह राखे पीत पीतांबर तिरपावन तनी थंब माए हर पाखे हरण आगस जन नखे बदारियो।

उपाल गंग जमन जो उल्टी बहे तो नामा घर करता रहे साल कड़ी जा बीती सुनी अजो न आयो तिर पवन तनी पाखंतन बाज बजाएला गरड़ चढ़े गोविंद आएला।

नाम दियो सबर आसमाए, मिल हिंदू सब नामे पह जाए, जो अब की बार न जीवे गाए, ता नाम देव का पतिया जाए, नामे की कीर्त रही संसार, भगत जनाले उदरिया पार, सगल कलेस निंदक पया खेद, नामे नारायण नाही भेद, कार दूजा जो गुर देवता मिले मुरार, जो गुर देवता उतरे पार, जो गुर देव ता बैकुंठ तरे, जो गुर देवता जीवत मरे, सत सत सत सत।

करता हुए सु अनपय रहे, फल कारण फूली बन राए, फल लागा तब फूल बिलाए, ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान पया तै कर्म नाश, कृत कारण

पद खोए साचा सेवो साची बाणी नानक नामे साच सुवाणी बसंत महला तीजा बिन करमा त परम भुलाई माया मोहे बहुत दुख पाई मनुख अंधे ठौर न पाई बिष्टा का कीड़ा बिष्टा माए सुमाई हुकम मन्ने सो जन परवान गुर के शब्द नाम निशान अरहाओ साजर ते जिना तुर लिख पाया हर का नाम सदा मन पाया सतगुर की बाण।

गुर सब्दी हर चेत सुभाए, राम नाम रस रहे अघाए, कोड़ कुटंत्र के पाप जल जाहे, जीव तुमरे हर नाम समाहे, हर की दात हर जीव जाने, गुर के शब्द एहो मन मोलिया, हर गुण दाता नाम खाने रहाओ, भगवे वेश प्रमुक्त न होए, बहु संजम सांत न पावे कोए, गुरमत नाम प्राप्त होए, वडभागी हर पावे सोए, काल में राम नाम वडियाई, गुर पूरे ते पाया जाई, नाम रते सदा सुख पाई, बिन नामे होमे जल जाई।

प्रसाद जो पसरी सूरज किरण जोत त्यों कड़ कर रमैया ओत पोत एक कोहा रविया सरबताए गुरसबदी मिल गए मेरी माए हराओ कड़ कड़ अंतर एक

परया मिर संगत कर प्रभंशे रहाओ तुमरा जन जात अब जाता हर जप्यो पतत पविशे हर कियो सागल पवन ते ऊपर हर सोभा हर प्रदिनशे जात अजात कोई प्रवचावे ता पूरे मानस तिनशे से तन वड्डे वड पूरे हर जन जेन हर तारो हर उर्चे हम ढींडे ढीम बहुत अद भारी हर तार कृपा प्रभ मिलशे जन नानक गुर पाया घर तूठे हम किए पतत पविशे बसंत हिंडोर महला चौथा मेरा एकिन मनुमा रह न सके नित हर घर नाम रस गीदे जो बारक रसक परे थन माता थन काढ़े बिलल बलीदे गोविंद जीओ मेरे मन तन नाम हर बीदे वड़े भाग गुर सतगुर पाया विच काया नगर घर सीधे रघाओ जन के सास सास है जेते हर बेरे प्रभु हर बीदे ज्यों जल कमल प्रीत अद भारी बिन जल देखे सुपली दे जन जप्यो नाम निरंजन नर हर उपदेश गुरु हर प्रीदे जन्म जन्म की होमे मल निकसी हर अमृत हर जल नीदे हमरे कर्म न बिचरो ठाकुर तुम पैज रखो अपनी दे हर पावे सुन बिनो बेनती जन नानक शरण पवीदे बसंत हिंडोल महला चौथा मन खिन खिन परम परम बोतावे तिल करणी वासा पाईए गुर अंक शब्द दारू सिर तारियो कर मंदर आण वसाइए गोविंद जीओ सत्संगत मेल घर त्याईए हौ में रोग गया सुख पाया हर सहज समाध लगाइए गाओ घर रतन लाल बहु माणक लादे मन भ्रमया लय ना सकाइए ज्यो ओडा कूप गुज खिन काढ़े त्यो सतगुर वत्स लहाइए जिन ऐसा सतगुर साधन पाया ते त्रिग त्रिग नर जीवाइए जन्म पदार्थ पुन फल पाया कौडी बदले जाएगे मधुसूदन

प्रभु देहे साध संगत में यो विश्राम सदा हृदय जपी प्रा तेरो नाम तुझ बिन दूजा कोई नाहे सब तेरो खेल तुझ मैं समाहे।

साधु संगत गुरे बताई, ऊहां जपिए केवल नाम, साधु संगत पार ग्राम, सगल तत् में तत् ज्ञान, सर्व ध्यान में एक ध्यान, हर कीर्तन में उत्तम तुना, नानक गुरमिल गाए गुना, बसंत महला पंजवा, जिस बोलत

दान तेरिया संत जिना की बाशो तूर। जप नानक स्वामी सद हजूर, बसंत महला पंजवा सच परमेश्वर नित नवा। गुर कृपा ते नित चवा, प्रभ रखवाले माई बाप। जाके सिमरन नहीं संताप, खसम त्याई एक।

तेरी सेवा तुझते होवे और ना दूजा करता। भगत तेरा सोई तुद पावे जिसनु तू रंग धरता। तू वरदाता तू वरदाना और नहीं को दूजा। तू समर्थ स्वामी मेरा हाँ क्या जाना तेरी पूजा। तेरा मैल अगोचर मेरे प्यारे विघम तेरा है पाना। कहो नानक तय पया द्वारे रख ले वो मुगद अजाना। बसंत हिंडोल महला पंजवा मूल न बूझे आप न सूझे परम व्यापी अहंग मनी। पिता पार ब्रह्म प्रवधनी मुए निस्तारो निर्गुणी रहाओ। उपत परलो प्रवते होवे

काम रखाओ, यो जग तुए का पहार, ते साचा मान्या के विचार। तन दारा संपद ग्रेहे, ता संग न चाले समझ लेहे, एक भगत नारायण।

कज बिगड़ो नाहन अज हो जाग रहाओ सब सुपने के यो जग जान बिन से शिन में साती मान संग तेरे हर बस्त नीत निज बासर पजताहे मीत बार अंत की होए सहाए कहो नानक गुणता के गाए बसंत महला पहला अष्टपदियां कार पहला दो तुकियां एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

ना पण सज दोत सवार प्रयो सेवो प्रभ प्रेम आधार गुर शब्दी बिगत्यास निवार मोहन मोह लिया मन मोहे गुर के शब्द पछाना तोहे नानक ठाडे चाह है प्रभु द्वार तेरे नाम संतोखे कृपा तार बसंत महला।

मन पूलो समझ सब साच नाए, गुरु शब्द विचारे सहज पाए रहाओ। मन पूलो परमस पावर तार, बिल बिरथे चाहे बहु विकार, मैग जो फासस कामहार, गड़बंधन बाध्यो शीस मार, मन मुग्धो दादर भगत हीन, दर पलट सरापी नाम बीन, ताके जात न पाती नाम लीन, सब दुख सुखाई गुणे बीन, मन चले न जाई ठाक राख, बिन हरस राखे पत न साख, तू आपे सुरता आप राख, हर तारण देखे जाने आप, आप पुराए किस कहो जाए, गुर मिले बिरथा कहो माए, अब गुण छोड़ो गुण कमाए, गुर शब्दी राता सच समाए, सदगुर मिले मत उत्तम होए, मन निर्मल होमे कड्डे तोए, सदा मुक्त

निर्माल निर्मल नाव घर में घर जो देख दिखावे गुरमैल नी सो मैल बुलावे मन में मनुआ चित में चीता ऐसे घर के लोग अतीता हरक सोगते रहे निराशा अमृत चाख हर नाम निवासा आप शान रहे लिवलागा जन्म जीत गुरमत दुख भागा गुर दिया सच अमृत पीवो सहजे मरो जीव।